हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 7 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल पर हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सवेरे के 6 बजने को हैं। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our ties.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा।

0: और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन वार।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कभी कमजोर नहीं पड़ें, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, आपके भीतर अनंत शक्ति है। आइए सुने भक्ति संगीत।

अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 212, 6:45 और संध्या 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिएगा श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। श्रोताओ, आज इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी आप सुनेंगे। सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

ये विविध भारती है, झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

दिन में 10 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिएगा कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग। दिन में 11 बजे विविधा में सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक रंग का संपादित अंश। सहभाग डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नरोत्तम बेन, ममता वर्मा। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा सदाबहार नगमे। 3 बजे होगा कार्यक्रम मनचाहे गीत। दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग में आप सुनेंगे नाटक पोस्टमैन का दूसरा भाग। के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद किया है पीएस कृष्णा स्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन। 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। आज महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल की शौर्य गाथा आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 7:45 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम साज और आवाज। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा झलकी कुत्ते के पिल्ले, लेखक और निर्देशक गुरमीत रामल मीत। 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। रात 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर सुनिएगा आज के फनकार और रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। झरोखा में ये थी जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये विविध भारती है, आइए सुने श्री रामचरित मानस का भाग 212।

चित्रकूट पहुंचकर श्रीराम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधी न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृप्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषाद राज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवक गण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहां आए हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। इस श्रृंखला की आज सातवीं कड़ी।
1: रविंद्र जी, अब तक हमने तीन ताल, रूपक, एक ताल और झपताल, शास्त्रीय संगीत में उपयोग में लाए जाने वाले इन तालों की बात की
2: जी।
1: इस पर आधारित फिल्मों में जो गीत हुए हैं उनकी चर्चा की। अब थोड़ी चर्चा ललित संगीत में जो उपयोग किए जाते हैं ताल और उन पर आधारित जो फिल्मी गाने हैं उनकी बात करते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
2: अभी ये जो है, जैसे तीन ताल, रूपक, एक ताल, झपताल, ये ख्याल गायन में इनका प्रयोग करते हैं
1: जी,
2: संगत के लिए, और उसमें विलंबित भी होता है, मध्यलय भी होती है और द्रुतलय भी होती है
1: जी।
2: अभी शास्त्रीय संगीत के अलावा हमारे भारतीय संगीत में उपशास्त्रीय संगीत है, तो उपशास्त्रीय संगीत जो है वो उसकी भी काफी बड़ी विधा है और उसमें भी कई महान कलाकार जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है
1: जी।
2: तो ये जो उपशास्त्रीय संगीत है इसमें ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, बारामासा, ऐसे कई सारे प्रकार है
1: जी।
2: तो ये जो प्रकार है इसमें उपयोग में लाए जाने वाले जो ताल है
1: जी,
2: उसमें प्रमुखता है कहरवा और दादरा। तो कहरवा जो है वो कहरवा फिल्मी गीतों में तो काफी गीतों में वो आया है, मतलब अनगिनत गीत है जिसमें कहरवा बजाया गया है, और कहरवा का एक अपना खुद का जो विशेषता है, कहरवा की विशेषता, मतलब जैसे अब हम लोग अगर तीन ताल का उदाहरण लेते हैं तो तीन ताल है 16 मात्रा
1: जी।
2: मतलब सम में आने के लिए हमको 16वीं मात्रा तक इंतजार करना होगा
1: जी।
2: कहरवा है 4 मात्रा, तो 4 मात्रा धागे न तीन अक धीन, तो ये हो गया फिर आसान। तो इसको इसलिए हम लोग ललित संगीत इसलिए कहते हैं कि वो उसमें सुलभता है, आसानी है, तो सुलभता आसानी होने की वजह से कहरवा में अनगिनत गीतों का निर्माण हुआ है।
1: और अलग अलग गीतों में रविंद्र जी कहरवा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं।
2: हाँ, कई सारे रूप है
1: जी।
2: तो इसमें हम लोग जो शुरू में बात कर रहे थे कि पैटर्न के बारे में, पैटर्न होते हैं
1: जी,
2: तो अभी कहरवा जो है वो केवल ये मूल
1: ये उसका
2: कहरवा है, धागे न तीन अक धीन
1: जी।
2: अब वो जो कहरवा है वो गीतों के साथ में कई रूप बदल बदल के आया है, और हर गीत में हमको एक नया कहरवा का रूप देखने को मिलता है
1: जी।
2: वो पैटर्न की वजह से है। तो ये पैटर्न जो होते हैं वो पैटर्न तो गीतों के अनुसार कई सारे हैं, एक हाथ दो मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ
1: जी।

0: ऐसे केरवा के कई सारे रूप
1: क्या है, बात है,
0: और इन सारे रूपों में हमको गीत सुनने को मिलते हैं। हम सुनते हैं गीत तो मतलब ऐसा

0: कहने को मन नहीं करता कि ये कैरवा बज रहा है।
1: हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, वो तो उसका इतना सुंदर सुंदर रूप देखने को मिलता है कि बस उसको केवल सुनते जाए, वो उसका कोई नाम ना दे हम
1: जी,
0: लोग
1: जी। तो ये हर अलग ढंग में जो कैरवा बजा है और उसका अलग रूप हमारे सामने आता है
0: जी।
1: तो ऐसे दो गीतों की झलक सुन लेते हैं
0: जी। हाँ,
1: कुदरत फिल्म का गीत है तूने और रंगीले क्या जादू किया, लता जी के स्वर में, और दूसरा गाना है मिलन फिल्म का सावन का महीना पवन करे शोर। इन दोनों गीतों में कहरवा अलग अलग ढंग से बज रहा है, तो ये जो इसकी खूबसूरती है, ये जो निरालापन है, सुनते हैं इन दोनों गीतों की झलक।

0: की विविधता जो देखने को मिली इन गीतों की झलक में श्रोताओं, इसके बाद रविंद्र जी से पूछना चाहेंगे कि कहरवा ताल का कोई और भी प्रकार है जिसे फिल्म संगीत में प्रयोग में लाया गया है?
1: हाँ, फिल्मी गीतों में लाया गया एक कहरवा का प्रकार है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में धुमारी ताल कहते हैं। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश या अन्य भागों में इसको कहरवा ही कहते हैं। तो कहरवा का ये जो आविष्कार है ये इसकी महाराष्ट्र की थोड़ी सी जो पार्श्वभूमि है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि महाराष्ट्र में नाट्य संगीत की परंपरा थी,
0: जी जी,
1: तो वैसे ही महाराष्ट्र में कीर्तन की एक परंपरा रही है, दीर्घ परंपरा है ये, बहुत बड़ी परंपरा चलती आई। तो ये कीर्तन जो होता है इसमें एक धुमारी ताल का प्रयोग होता है, तो वो जो प्रयोग है, तो कीर्तन में अक्सर जो कीर्तन करने वाले हैं वो

0: वाह,
1: ये कहरवा का ही एक अंग आ गया इसमें। तो इस अंग को लेकर भी फिल्मों में गीत बनाए गए हैं और वो काफी अच्छे गीत है
0: जी,
1: लोगों ने बहुत पसंद किए हुए गीत है।
0: तो रविंद्र जी, ये जो एक कहरवा का रूप है जिसे धुमाड़ी कहा जाता है, क्या फिल्म संगीत में इसका उपयोग हुआ है?
1: हाँ बिल्कुल हुआ है, और मतलब वो उदाहरण बताने के लिए ही मैंने अभी इस उस ताल का जिक्र किया।
0: हाँ।
1: कि धुमाड़ी का प्रयोग जो है वो आप सब लोग जानते हैं, गाना अजहुन आए बालमा
0: सावन बीता जाए।
1: तो इसमें जो धुमाड़ी जो हम लोग महाराष्ट्र में जिसे कहते हैं,
0: हाँ,
1: वो उसमें सुनने को मिलता है।
0: क्या बात है, सांझ और सवेरा फिल्म का बड़ा ही सुंदर गीत है, राग मधुवंती पर आधारित। तो सुनते हैं इस रचना को संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला की ये थी सातवीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: विविद भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: उजाला फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: हाल कैसा है जनाब का?
2: क्या ख्याल

आप सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।

आप सुन रहे थे बालयोगी फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में। भरत व्यास के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। विविध भारती से श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

बुलु सिरानी की तर्ज थी शिवन रिजवी के बोल आपने सुने, इस्माइल आजाद कव्वाल और साथियों की आवाजों में अल हिलाल फिल्म की ये कव्वाली थी।

0: ओपिनियन नैयर के संगीत निर्देशन में शमशाद बेगम की आवाज थी। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे 12 o'clock फिल्म से।
1: कैट, कैट माने बिल्ली।
2: आर ए टी रैट, रैट माने चूहा।
1: सी ए टी कैट, कैट माने चूहा।

0: G O A T goat. Goat माने बकरी. L I O N lion. Lion माने शेर. अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: M-A-D, man.

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल सुरों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, रवि का संगीत था। भूली बिसरी गीत कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: सुरीली धड़कन, हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए, बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: फिल्म अनहोनी का दो गाना था, लता मंगेशकर और तलत महमूद का गाया, सत्येंद्र की बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: 11,000 लड़कियां, इस फिल्म का गीत आपने सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी आशा भोसले की। एन दत्ता का संगीत था। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये नगमा आपने सुना।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

0: मेरा नाम जोकर, इस वक्त गीत था आशा भोसले, मुकेश और सिमी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोलों को सुर में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: फिल्म बॉबी का ये गीत है लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह की आवाजों में।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह की आवाजों में बॉबी फिल्म का गीत आपने सुना। विठल भाई पटेल की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओ, यही थी हम है राही प्यार के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: FM बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में

0: मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतविदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रिस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
4: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव

0: देखे टीम का कप्तान बनाया गया है तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर पलक्कड़ मलप्पुरम कोझिकोड वायनाड कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज

0: समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोतम फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे हैं फिल्म गले लग जा से ये गीत जावेद अली और बेन ज्योत्सना की आवाज, आशीष पंडित के बोल और प्रीतम का संगीत।

संगीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

0: वालों को प्यार भरा नमस्कार। इस खूबसूरत सी संडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है उस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।
1: जी हाँ, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है इस खूबसूरत अंदाज में और इस कार्यक्रम को जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो ये सशक्त टीम है जो इस कार्यक्रम को लेकर आती है, उसका भी परिचय आपसे करवाते हैं। एचपीटी पर है कैलाश चंद्र सोलंकी, प्रकाश पंवार।
0: एफएम ट्रांसमीटर की कमान संभाली है सुनील जयपाल ने।
1: और कंट्रोल रूम से नियंत्रण कमान संभाल रहे हैं प्रवीण कुमार।

0: अनाउंसर ऑन ड्यूटी एचपीटी के ट्रांसमिशन में है शुभम गांग.
1: और अनाउंसर ऑन ड्यूटी एफएम पर है सत्येंद्र चारण.
0: दोस्तों आज के नमस्कार का संयोजन और प्रस्तुति है राजेश लामरोड की और साथ ही साथ आज के इस नमस्कार के सफर में आपके साथ है हम सफर और मेरे सफर में आज मेरे साथ है नेहा राकावत.
1: जी हाँ और मेरे साथ है स्वाति भंसाली.
0: बहुत सारी बातें आज मैं और नेहा आपके साथ शेयर करने वाले हैं. वैसे नेहा जो बातें हम सारी शेयर करेंगे उनके साथ जो खास गाने इस खूबसूरत सी संडे मॉर्निंग में हमने चुने हैं अपने लिसनर्स के लिए वो तो बिल्कुल नए नवेले हैं और हमारी बातें भी होंगी नए नवेली. लेकिन उन नए नवेली बातों को शुरू करने से पहले ये खूबसूरत सा प्यारा सा सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए.

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर इस वक्त जो प्रोग्राम आपके रेडियो सेट पर ट्यून्ड है वो है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और वैसे नेहा नमस्कार में जब हम अपने श्रोताओं को भी नए नवेले गाने सुनवाते हैं तो हमारे कई लिसनर्स कहते हैं कि भाई इन गानों में वो बात नहीं है जो पुराने गानों में होती है। और मुझे लगता है कि पुराना हो या नया हो ये सिर्फ हमारे नजरिए का फर्क है। हम जिस नज़र से उन गानों को देखते हैं जिस भाव से हम उन गानों को सुनते हैं हमारा नजरिया भी कुछ वैसा ही हो जाता है।
1: बिल्कुल है ना। और नजरिए से ही एक कहानी मुझे सुनानी है आपको स्वाति और मेरे श्रोताओं को भी मुझे सुनाने की बहुत दिली इच्छा हो रही है कि मैं सुनाऊं क्या होता है नजर और नजरिया।
0: बिल्कुल
1: जो हमारी नजर है जिस तरीके से अलग अलग सब लोगों की अलग अलग नजर है किसी की अच्छी खूबसूरत जैसा भी हम बता सकते हैं वैसे हो सकती है वैसे

0: जरिया भी अलग अलग होता है। तो एक छोटी सी और बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी आपसे मैं शेयर करूंगी। एक बार क्या होता है ना कि एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है, क्या कीमत है इसकी। तो पिता कुछ देर सोचते हैं, उसको फिर थोड़ा समझ के फिर अपनी बात शुरू करते हैं। कहते हैं कि देखो, बिना कुछ बोले हुए घर के कबाड़ खाने से एक पुराना सा जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा निकालते हैं। अब वो क्यों निकाला था उन्होंने, उसकी भी बात सुनते हैं। उन्होंने बच्चे को वो टुकड़ा देते हुए कहा, बेटा बाजार जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना मत, बस लोग जो दाम लगाए उसे देख कर आ जाना।
1: और वैसे वो बच्चा मतलब बहुत ओबीडियंट था या नहीं, कि भाई पापा ने कहा और वो चला गया, या ऐसा हुआ कि नहीं नहीं पापा मैं क्यों जाऊं, आपने मुझे क्यों काम दिया। आजकल कई बार हम देखते हैं कि बच्चे ऐसा करते हैं, तो वो बच्चा कैसा था?
0: वो बहुत ही, अब जैसे उसने क्वेश्चन ही ऐसा किया तो वो क्यूरियस तो था, अपनी क्यूरियोसिटी से उसको वो जो जानना था वो जानना था। तो पापा ने जो बोला है उससे अगर उसको अपना आंसर मिलेगा तो वो बिल्कुल करेगा। तो वो सबसे पहले पास के एक कबाड़ वाले के पास गया। कबाड़ वाले ने लोहे के टुकड़े को देखा और बोला, ये तो पूरी तरह जंग खा चुका है, इसके मैं तुम्हें मुश्किल से 20 रुपए दूंगा। तो बच्चा आगे बढ़ा और लोहार की दुकान पर पहुंचा। लोहार ने उसे थोड़ा सा ध्यान से देखा और कहा, अगर मैं इसे पिघलाकर इससे कुछ छोटे औजार या कीले बनाऊंगा तो मैं तुम्हें इसके 200 रुपए दे सकता हूँ। इस तरह से अलग अलग वैल्यू वो बता रहे हैं। इसके बाद बच्चा शहर के एक बड़े मूर्तिकार के पास गया, स्कल्प्टर के पास गया। मूर्तिकार ने उस लोहे को हाथ में लिया, उसकी बनावट देखी और आंखें चमकाते हुए बोला, ये लोहा भले ही पुराना है लेकिन ये है बहुत मजबूत और खास। अगर मैं इसके एक शानदार ऐतिहासिक तलवार या फिर कोई ऐसी मूर्ति बना दूंगा तो ये काम जो है बहुत अच्छा होगा, और इसके कम से कम 20,000 रुपये में वो जो मेरी मूर्ति है वो बिक सकती है, तो मैं तुम्हें इसके आराम से 20,000 देने के लिए तैयार हूँ।
1: ये देखो ना, मतलब कितनी सरप्राइजिंग बात लग रही है नेहा, कि कबाड़ वाला जिस लोहे के टुकड़े के 20 रुपए दे रहा था, वही लोहार उसके 200 रुपए और एक मूर्तिकार उसी लोहे के टुकड़े के 20,000 तक देने को तैयार। कितना सरप्राइजिंग,
0: बहुत सरप्राइजिंग था। तो वो बच्चा भी इतना सरप्राइज हुआ, वो हैरानी से भागा भागा अपने पिता के पास आया और पूरी बात उनको बताई। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, देखो स्वाति, बताती हूँ वो बात, देखो ठीक इसी तरह जो तुम्हारी जिंदगी है उसकी कीमत भी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम अभी क्या हो, इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो और कैसे लोगों के बीच उठते बैठते हो। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये बताऊं? देखो, जैसा कि उसके पिता ने बताया कि खुद को कम मत समझो कभी भी। आपके भीतर, आपके अंदर काफी संभावनाएं हैं, काफी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर कोई आपको बेकार समझता है तो गलती उसकी परख की है, आपकी काबिलियत की नहीं है। और आपको अपनी संगत का चुनाव जो है वो किस तरह से करना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपकी कद्र नहीं जानते तो वो आपको 20 रुपए के कबाड़ के भांति ही समझेंगे, है ना। और लेकिन अगर आप अपनी कद्र रखने वाले, आपको तराशने वाले या फिर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी वैल्यू करोड़ों में होगी।
1: बिल्कुल, और करोड़ों में नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमारा जीवन खुद कितना अनमोल है, इसको हम तभी जान सकेंगे जब हम जिंदगी को खुल के जीना सीखेंगे। और मुझे भी तुम्हारी बात सुन के घड़ी की बात याद आ रही है, बताऊंगी अपने लिसनर्स को, लेकिन इस खूबसूरत से नए नवेले गीत के बाद।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: स्वाति, ये जो गीत हमने सुना अभी बीते लम्हे, तो बीते लम्हे से मुझे वो पल याद आ गए, मुझे उन पल से वो चीज़ याद आ गई, वो घड़ी याद आ गई जिसकी बात तुम कर रही थी, और वो जो टिक टिक है वो घड़ी की जो मुझे परेशान कर रही थी कि क्या बात है, मुझे वो वही जानना है, आप बता दीजिए
1: ना। हा? मुझे ये लगा कि ये जो गाना अभी हम इतना खूबसूरत सा गाना केके की आवाज़ में सुन रहे थे फिल्म द ट्रेन से, बीते लम्हे जब भी याद आते हैं, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बिल्कुल, दर्द जब जीवन में होता है ना, और ऐसे में अगर कोई आशा की किरण, कोई मुस्कुराहट का सबब अगर मिल जाए तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। और हम पहले बात कर रहे थे नज़रिए की, तो नज़रिया हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और वो पॉजिटिविटी की बात, वो सीख हमें घड़ी से मिलती है। कैसे? अगर सोचो, घड़ी जो है उसका काम है चलना, समय बताना।
0: बिल्कुल,
1: घड़ी चलती रहती है अनवरत, एक ही दिशा में चलती रहती है। कभी किसी घड़ी को उल्टे चलते हुए देखा है?
0: नहीं,
1: नहीं है ना। जब घड़ी एक ही दिशा में चलती है, और ऐसे में

0: ही बंद हो जाती है तो क्या समय रुक जाता है?
1: बिल्कुल नहीं,
0: समय तो फिर भी चलता रहता है। लेकिन क्या बंद घड़ी ने अपनी उपयोगिता खो दी है? आप सोचिए, पूरे 24 घंटे में वो जो बंद घड़ी है वो भी दो बार सही समय बता जाती है।
1: क्या बात,
0: क्योंकि समय नहीं रुकता है। तो बिल्कुल, यानी जिंदगी में हर एक व्यक्ति की, हर एक पल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बस उस इम्पोर्टेंस को पहचानना है। आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट आपके जानने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, सबके लिए जीने का सबब बन जाता है। और ऐसे में अगर कोई निराशा आ जाती है तो क्या जिंदगी को खत्म करना होता है?
1: बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल भी नहीं। उनके चेहरे को याद कीजिए, उनकी मुस्कुराहटों को याद कीजिए, उनकी आशाओं को याद कीजिए। जिंदगी जीने का जो मुद्दा है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। और ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इसको जी के इसका आनंद लीजिए। और आनंद लीजिए हमारे उन खास नए नवेले गीतों का जो हम चुन के लाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: दोस्तों हम ना अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर दुख मतलब फील करते हैं और दुखी हो जाते हैं और बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन सच ये है कि खुशी जो है वो छोटे छोटे लम्हों में, छोटे छोटे मोमेंट्स में होती है। किसी पुराने दोस्तों का अचानक से कॉल आ जाना, या फिर बारिश के मौसम में, या फिर ऐसे ही कोई चलते फिरते हमारा मन हो जाना कि हमें गर्म चाय पीनी है, उसका प्याला हमारे साथ में शेयर करने वाला हमें कोई मिल जाए, एक बस सुकून भरी नींद हमें कभी मिल जाए जैसे आज छुट्टी का दिन है। तो छोटी छोटी बातें जो है स्वाति मुझे लगता है जिंदगी को खास बना देती है। तो
1: और बिल्कुल नया तुम्हारी बात से मुझे याद आ रहा है कि जोधपुर वालों के लिए तो हमारा एक बहुत बड़ा सुकून ये होता है कि अगर गरम गरम उतरते पाए का मिर्ची वड़ा मिल जाए, चाहे कितनी भी गर्मी हो, भले मई जून की तपती हुई दोपहरी भी हो, लेकिन मिर्ची वड़ा तो गर्म ही चाहिए।
0: और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी, जो छोटी सी खुशी मिल जाएगी, कैसे मिलेगी वो खुशी, कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा उस पाए के लिए। होता ना कई बार हम लोग मिर्ची वड़ा खाना जाते हैं कि अभी ये पूरा पाया तो बुक है किसी के लिए, तो हमें लगता है यार बस ये क्यों नहीं नसीब में,
1: थोड़ा सा इंतजार हम कर लेंगे अगले पल।
0: हाँ बिल्कुल,
1: लेकिन ठंडा नहीं चाहिए,
0: ठंडा नहीं चाहिए, हम कितना ही इंतजार कर सकते हैं।
1: सोचो अगर गर्मी में हमारा ये हाल है तो अब जब मौसम जो है वो बदलने वाला है, मॉनसून जो है वो केरल में तो पहुंच ही चुका है 4 जून को, और 20 जून तक कह रहे हैं कि राजस्थान में भी दस्तक दे देगा मॉनसून, तो फिर जब बारिश की फुहारें पड़ने लगेगी, और अभी से मन का मयूर तो नाचने लग गया है आने वाली बारिश के स्वागत के लिए, तो फिर सोचिए ना कि मौसम का मिजाज जब बदल जाएगा और ऐसे में हमारा मूड भी अगर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगे तो शायद इस मौसम का आनंद भी हम ले सकेंगे। बिल्कुल, तो राजस्थान में हम स्वागत करेंगे क्योंकि जयपुर में तो तेज़ हवा के साथ बारिश शुरू हो चुकी है और कई शहरों में भी कल असर देखा गया, जयपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, तो शनिवार को बारिश हुई थी और तेज़ धूल भरी आंधी ने भी हमें राहत दी थी, और हमारे यहाँ पर भी जोधपुर में भी रात को जो हवाएँ थोड़ी ठंडी हो गई थी उसने राहत तो दी थी। तो राहत हमेशा रहेगी और हमारे प्रोग्राम में राहत मिलती है खूबसूरत गानों के साथ जो कि होते हैं नए नवेली।

0: समझा।
1: श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजने वाले हैं सुबह के 9। कुछ ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार कार्यक्रम लौटेगा समाचारों के ठीक बाद, यानी कि 9:10 पर।
2: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। समय हुआ है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा है कि ये विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी संदेश को नहीं मानने और किसी तरह का भुगतान नहीं करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा कल जोधपुर रेंज कार्यालय में अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर बैठक कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने इन क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देकर अपराधियों, अवैध गतिविधियों और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। श्री शर्मा नए आपराधिक कानूनों का प्रयोग कर पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय की दिशा में काम करने की बात कही।
1: जो ड्रग माफिया हैं उनके संपत्तियों को नष्ट करने की, जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। आज की भी बैठक में ड्रग्स के खिलाफ और किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हमें करनी है, इस पे विशेष रूप से चर्चा की। राजस्थान में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना हो रही है, जिसके लिए भी हम लोग कोशिश में हैं कि वो जल्दी ही क्रियाशील हो। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे हमारे जो निगरानी है साइबर क्राइम में, उसको हमने बढ़ाया।
0: बैठक में जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह सहित जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बालोतरा, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और जालौर जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। जैसलमेर के सरहदी गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना 2 के तहत विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। भारत पाक सीमा से सटे 30 गांवों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, पलायन रोकना और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2, ये भारत सरकार की गृह मंत्रालय द्वारा ये योजना का संचालन होता है। इसमें इस बार टोटल 184 विलेजेस लिए गए हैं। इसमें से जैसलमेर जिले के 30 विलेजेस को आइडेंटिफाई करा है। बेसिकली जो सरकार चाह रही है कि उसमें जो हमारे कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, 4G कनेक्टिविटी हो गया, दूरभाष कनेक्शन हो गया, टीवी कनेक्टिविटी हो गया, तो इन पैरामीटर्स में सभी चयनित गांवों का सैचुरेशन हो।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल जयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की बैठक में भूमि आवंटन से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आपसी तालमेल के साथ लंबित मामलों का निराकरण करने और हर प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने भूमि उपलब्धता से जुड़ी बाधाओं को दूर कर बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये दिन हर साल 7 जून को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में

0: श्री शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न शहरों, पार्कों, स्टेडियमों और योग संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। व्यास बगीची में लोगों ने अनेक आसनों के जरिए नियमित रूप से योग करने का संदेश दिया। योग दिवस की इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस बीच अहमदाबाद में चल रही विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत के रोहन तायड़े ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने ये उपलब्धि लड़कों की सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल प्रतियोगिता में हासिल की। चैंपियनशिप में भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। फिट इंडिया मिशन के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में साइकिल सवारों ने भाग लिया। पाली में पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को सेहत के प्रति जागरूक रहने और नियमित व्यायाम और फिटनेस का संदेश दिया। अजमेर में राजस्थान पुलिस और 11 राज यूनिट एनसीसी की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान यूनिट के सीओ कर्नल अजय दाधीच ने दैनिक जीवन में साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
1: साइकिल चलाने से हम सिर्फ पोल्यूशन का ही नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हैं हम अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इफ यू वांट टू फिट योरसेल्फ, एक बार संडे को, नहीं तो कभी भी छुट्टी पे, और जैसे बच्चों की तो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उसमें साइकिल का ग्रुप बना के आराम से कहीं ना कहीं इवेंट रखना चाहिए कि आज यहां जा रहे हैं, कभी इस फ्रेंड के यहां जा रहे हैं, आप फिट रहेंगे।
0: राज्य में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के असर से कल कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर सहित करीब 13 शहरों में बारिश हुई। इसके साथ ही बीकानेर के लूणकरणसर में ओले गिरने के भी समाचार हैं। आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच रात का न्यूनतम तापमान भी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। विभाग ने आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में बरसात की संभावना व्यक्त की है। आंधी बारिश की गतिविधियों में कल से कमी आने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। कल से पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट जीत लिया है। जापान के काकामिगाहारा में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला हॉकी टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टीमों को बधाई देते हुए कहा कि ये खिलाड़ी भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और आज के इस नमस्कार के इस सफर में आपके हम सफर हैं, मेरे साथ है नेहा राकावत।
3: जी हाँ, और मेरे साथ हैं स्वाति बंसाली।
2: बिल्कुल, आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: दो ग्रहों को जब ऐसा लगा कि एक दूसरे का साथ बहुत खूबसूरत हो सकता है तो बिल्कुल उन्होंने भी नज़दीक आने का निश्चय किया और वैज्ञानिक भी इस दुर्लभ घटना को कह रहे हैं कॉस्मिक किस। बिल्कुल 8 और 9 जून की शाम को शुक्र और बृहस्पति ये दोनों ग्रह बहुत ही करीब दिखाई देंगे और आसमान में इसे देखने के लिए दूरबीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे आपको। और एक पश्चिमी क्षितिज में सूर्यास्त के तुरंत बाद ही शुक्र चमकीली वस्तु के रूप में दिखाई देगा और उसके पास ही बृहस्पति भी चमकता नजर आएगा। तो आप भी इस खगोलीय घटना का आनंद जरूर लीजिएगा और जब तुम हो तो सब अच्छा है और ये तुम जो है वो अगर हमारा स्वास्थ्य बन जाए तो उस स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए साइकिलिंग सबसे बेहतर विकल्प है। और साइकिलिंग के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है सनडे ऑन साइकिल, उसका आप भी हिस्सा बन सकते हैं। आज के दिन जो है वो अपने स्वास्थ्य के नाम कर सकते हैं साइकिलिंग के द्वारा। और बिल्कुल एक और खास दिन जो आज हमारे खाने से जुड़ा हुआ है वो है फूड सेफ्टी डे, है ना?
1: बिल्कुल। और जहाँ तक हमारे लिए ज़रूरत है कि हम एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें और अपनी सेहत को बहुत बेहतर बनाएं, उसी तरीके से ज़रूरी है हम फूड के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी हम साथ में हैंडल करते हैं हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जो हम सभी के जीवन से और हमारे रेगुलर डे से जुड़ा हुआ है, वो है खाद्य सुरक्षा। और हर साल 7 जून को हमारे हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं और इसका जो उद्देश्य है उसकी बात करें स्वाति, तो वो है लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व के लिए जागरूक करना। क्योंकि भोजन हमारे जीवन का आधार है, लेकिन यदि वही भोजन जो है वो खराब हो जाए, दूषित हो जाए, तो काफ़ी सारी बीमारियों का कारण वो बन सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है हर साल करोड़ों लोग जो असुरक्षित भोजन करते हैं उसकी वजह से बीमार पड़ते हैं और इसीलिए भोजन का सुरक्षित होना, उसका अदूषित जो है दूषित ना होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, उसका उतना ही पौष्टिक होना भी। तो आज इस साल की जो 2026 की थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, वो है बोझ से समाधान की ओर और हर जगह सुरक्षित भोजन। ये विषय हमें बताता है कि खाद्य जनित रोग जो है उसकी चुनौती को समझा जाए और ऐसे समाधान जो है वो अपनाए जाए जिनसे हर व्यक्ति, हर लोग जो है वो सुरक्षित भोजन प्राप्त कर सके, उनकी पहुंच उस तक बन सके। विशेषज्ञ बताते हैं कि भोजन को हमेशा साफ हाथों से तैयार करना चाहिए, कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थ को अलग रखना चाहिए और साथ ही साथ पर्याप्त तापमान पर ही भोजन पकाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको कभी हाई टेम्परेचर पर रख रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं और बार बार जो हम खाने को गर्म करते हैं स्वाति, वो भी बहुत ही हानिकारक हो सकता है हमारे खाने के लिए। और सरल उपाय से हम खाद्य जनित जो भी संक्रमण होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, उन खतरों से काफ़ी हद तक हम उनको कम कर सकते हैं। तो श्रोताओं, सुरक्षित भोजन जो है स्वस्थ जीवन की कुंजी है। तो आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन इस सुरक्षा दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि हम खुद भी खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे।
0: बिल्कुल नेहा, और इसके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आज के समय की मांग है वो ये कि कई बार हम सोशल मीडिया पे जो फूड इन्फ्लुएंसर्स आजकल हो गए हैं, ब्लॉगर्स हो गए हैं, वो बहुत सारे देखो ना अनहाइजीनिक फूड भी जो है उसकी ब्लॉगिंग करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से, अरे चाहे वो एल्युमिनियम में खाना बन रहा हो या अगर बहुत अनहाइजीनिक तरीके से गंदे हाथों का प्रयोग करके या मक्खियाँ बन बना रही हैं, मच्छर बन बना रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से उसके बारे में बताते हैं कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और आजकल ये जो स्ट्रीट फूड का चलन बढ़ा है, ऐसे में स्ट्रीट फूड अगर आप कभी कभार कभी महीने में एक आध बार सेवन कर लिए तो शायद उतनी तकलीफ ना हो, लेकिन आसपास उसमें भी हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखें कि जिस स्ट्रीट फूड वेंडर से आप खाना ले रहे हैं उसके आसपास सफाई हो, वरना बीमारियों को दावत देते देर नहीं लगेगी। और ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि खाद्य सुरक्षा के जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो जिस भी वेंडर से आप खाना ले रहे हैं वो फॉलो कर रहा है या नहीं, इस बात की सुनिश्चितता ज़रूर करें। तो बातें आपसे और भी शेयर करते रहेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

ये सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में आज ही प्राप्त करें। सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाएं।

श्रोताओं, मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में हम अभी बात करने वाले हैं इतिहास की। आज की बात इतिहास के साथ में, कैसा आज का दिन हमारा जो है वो इतिहास से जुड़ा है। 7 जून का इतिहास भारत और विश्व दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। और इस दिन की सबसे जो ऐतिहासिक घटना है वो महात्मा गांधी के नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। तो महात्मा गांधी और पीटर मारिट्सबर्ग की घटना, जो कि 1893 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका के इस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर महात्मा

0: जब वो युवा वकील हुआ करते थे, उनके साथ में रंग भेद के कारण केवल गोरों के लिए आरक्षित प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। और इसी इसका जो महत्व है इस घटना का, उसने उनके जीवन पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी, उनका पूरा जीवन बदल दिया, टर्निंग पॉइंट उसे कहा जा सकता है। उन्होंने वहीं से रंग भेद और अन्याय के खिलाफ लड़ने की कसम खाई थी और जिसने आगे चलकर सत्याग्रह का रूप लिया था।
1: बिल्कुल नजर आती है वो खास घटना जब पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा था सन 1975 में, और लॉर्ड्स के मैदान पर पहले एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का जो पहला मैच है वो आज ही के दिन भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। और यही वो मैच था जब सुनील गावस्कर ने 174 गेंदों पर नाबाद 36 रनों के ऐतिहासिक रूप से एक पारी खेली थी। हालांकि ये रिकॉर्ड बहुत स्लो बैटिंग का था, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है और अपने आप में एक ऐसा मुकाम बन जाता है हर क्रिकेटर के करियर में, जैसे इस तरह का कोई एक मुकाम आता है जिससे भविष्य से के लिए सीख लेने की प्रेरणा जरूर मिलती है।
0: बिल्कुल। और आज ही के दिन सन 1979 में भास्कर एक का प्रक्षेपण किया था। भारत ने अपना दूसरा उपग्रह जो है वो भास्कर एक के नाम से सोवियत संघ के भालू झील से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, और ये पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला उपग्रह था दोस्तों।
1: बिल्कुल। और जब तुमने ये बात की है अंतरिक्ष की, तो मुझे भी याद आ रही है साल 2006 की वो घटना जब भारत ने अपनी पहली परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया था।
0: जी हाँ। और अब बात करें वैश्विक इतिहास की प्रमुख घटनाओं की, तो वो है सन 1929 में वेटिकन सिटी की स्थापना हुई थी। लैटरन संधि के लागू होने के साथ ही वेटिकन सिटी दुनिया का एक स्वतंत्र संप्रभु देश बना, और ये क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है।
1: और बिल्कुल एक और ऑपरेशन ओपेरा की घटना मुझे याद आ रही है जो एक वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रही है। ये घटना हुई थी आज ही के दिन सन 1981 में। तो इसी तरह की इतिहास की घटनाएं जो है वो हमेशा हमारे विश्व के निर्माण का आधार बनती है, बशर्ते हम अपनी गलतियों से सीख लें और उन्हें ना दोहराने का संकल्प लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो बातें आपसे शेयर कर रहे हैं इस वक्त मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, और आज मेहमान के रविवार में हमारे साथ कौन जुड़ेंगे, ऐसे खास व्यक्तित्व जिनका रविवार होता है बहुत खास। जानने के लिए सुनते रहिए खास प्रोग्राम को मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार, और अभी आनंद लीजिए इस गीत का।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
6: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के,
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम. नमस्कार. आज जैसा कि बताया कि रविवार है और छुट्टी का दिन है, फुर्सत का दिन है. हालांकि हम में से कई लोग गर्मी की छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं, फिर भी हर दिन से कुछ खास फुर्सत में भी थोड़ी और फुर्सत का एहसास दिलाता है ये वार. रविवार ऐसा ही है और नमस्कार कार्यक्रम के द्वारा इसे और भी खास बना दिया जाता है हमारे स्पेशल सेगमेंट के द्वारा, जिसका नाम है मेहमान का रविवार. और हमारे आज के मेहमान बहुत ही खास हैं, अपने अंदाज से, अपने काम से और अपने रुतबे से. जिस मुकाम पर वो फिलहाल हैं, वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा है. जी हाँ दोस्तों, और उनके संघर्ष की कहानी उनके मुखज़ुबानी सुनेंगे, उनके उनसे रूबरू होंगे. फ़ोन आउट के ज़रिए हम से जुड़ गए हैं फिलहाल हमारे आज के गेस्ट स्टार ADCP हेडक्वार्टर जोधपुर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री गुमनाराम जी. श्रीमान, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं आज समस्त आकाशवाणी टीम की तरफ से हमसे जुड़ने वाले अभी. हेलो,
1: नमस्कार नेहा जी.
0: जी
1: आपका और आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार.
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका, नमस्कार आपको भी. सर आप कैसे हैं अभी, फिट एंड फाइन?
1: बिल्कुल बढ़िया.
0: बिल्कुल आप सही सर, ये बात जानना चाहेंगे आप जिस प्रोफेशन से हैं वहाँ उस माहौल में आप अपनी जो जी जान लगा देते हैं, समर्पण भाव से आप अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, ऐसे में ये साफ है कि आपका संडे भी उसी कर्तव्य को निभाने में लगा रहता होगा. फिर भी आप किस तरह अपनी व्यस्तता में ये अपने लिए समय निकालते हैं, अपनी फैमिली के लिए समय निकालते हैं, उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे सर.
1: वैसे ये बात सही है कि पुलिस में कई बार मतलब ड्यूटी में समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अलग अलग ड्यूटी रहती है. ज्यादातर फील्ड ड्यूटी के जो अधिकारी होते हैं उन्हें थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर और अन्य कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहना पड़ता है, जबकि कुछ ऐसे पद हैं जिसमें पदीय कर्तव्यों में ऑफिस ड्यूटी रहती है, तो उनको शनिवार और रविवार में कुछ समय मिल जाता है. तो वर्तमान में जहां मैं पोस्टेड हूँ वहां पर यद्यपि फील्ड ड्यूटी नहीं होने के कारण मुझे शनिवार या रविवार को कोई ड्यूटी नहीं होती है तो समय मिल जाता है और उसके अनुरूप हम संडे को एंजॉय करने का प्रयास.
0: अच्छा जी, तो किस तरह से आप अपने संडे को या वीकेंड को जो है वो खास मनाते हैं? क्या आप खुद भी कुछ अलग अपनी हॉबीज रखते हैं या बताएं सर आप?
1: मैं तो अभी वैसे यहाँ पर जोधपुर कमिश्नरेट में अभी 20 मई को आया हूँ
0: जी.
1: तो यहाँ आने के बाद में तो वैसे 2-3 संडे निकले हैं तो उनमें ज्यादा ड्यूटी रही है, क्योंकि अभी एक फिट इंडिया प्रोग्राम चल रहा है तो संडे ऑन साइकिल अभियान है उसके तहत, इसलिए 2 रविवार में और 1 एग्जाम ड्यूटी थी, और इस बार भी आज संडे में संडे ऑन साइकिल अभियान था जिसके तहत जवानों के

0: साथ साइकिल चलाई 5 किलोमीटर और उसके बाद में योगा किया, व्यायाम किया। और एक हमारे पुलिस आयुक्त महोदय श्रीमान शरद कविराज सर द्वारा एक विशेष नवाचार किया गया है, जो पुलिस आयुक्तालय में लगभग 4000 जवान है
1: जी जी।
0: तो उन जवानों का हेल्थ का परीक्षण करवाया गया और परीक्षण करवाने के बाद में ऐसे जवान जिनकी बीएमआई 25 या उससे ज्यादा है,
1: अच्छा,
0: उन जवानों के स्वास्थ्य के लिए और उनको स्वस्थ और फिट बनाने के लिए विशेष प्रकार के प्रोग्राम जैसे प्रतिदिन लाइन में योगा, एक्सरसाइज, शनिवार को 5 किलोमीटर वॉक एंड रन, रविवार को साइकिल चलाना और खास डाइट, दिनचर्या, इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो हेल्थ के एक्सपर्ट है उनको लाकर उनसे मार्गदर्शन करवाकर इस तरह का एक नवाचार किया जा रहा है और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो अभी तो इस नवाचार में हम भी उसमें भागीदारी निभा रहे हैं।
1: जी सर, ये तो हो गई इस संडे की, इस सैटरडे की बात। आप अपनी जो यूजुअल संडेज जो है वो स्पेंड करते होंगे, अपनी फैमिली के लिए कभी टाइम निकालने का सोचते होंगे, तो वो किस तरह से आप उसका मैनेज कर पाते हैं अपने टाइम के साथ में? क्या आप खुद भी कुछ ऐसी हॉबीज के साथ में, या कहें कि घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो वहां जाना चाहते हैं कभी?
0: बिल्कुल, जब फैमिली साथ होती है तो संडे को कहीं कोई बाहर भी घूमने निकल जाते हैं। पहले उधर मैं करौली था तो उधर थोड़ा प्राकृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध जिला था, तो उसमें वहाँ जो और भी ऐसे दर्शनीय स्थान है, धार्मिक स्थान है, वहाँ घूमना। इसके अलावा जब घर पे होते हैं तो थोड़ा सा राजस्थानी लोकगीत, भजन सुनना में थोड़ी सी रुचि है
1: जी।
0: या फिर कभी कभी प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ना,
1: अच्छा,
0: इस प्रकार से संडे को व्यतीत करते हैं।
1: सर, आप किताबें पढ़ने के शौक रखते हैं, आपने किताबें लिखने का भी आपने जो है एक बार सोचा है कि हम लिखना भी पसंद करते हैं, ऐसा भी है सर?
0: बिल्कुल, इतना समय तो नहीं मिल पाता लेकिन एक प्रयास किया था मैंने, जैसे युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन के लिए एक पुस्तक कोशिश से कामयाबी तक मैंने लिखी
1: जी,
0: है
1: जी,
0: जिसमें युवाओं को अच्छी शिक्षा के कौन कौन से अवसर हैं और इसके बाद में अच्छी शिक्षा अर्जित करने के बाद अच्छे रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी और आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा बोर्ड की परीक्षाओं की कैसे तैयारी की जाए
1: जी,
0: इस संबंध में उसमें विस्तार से समझाया गया, तो एक प्रयास किया था मैंने
1: जी। जी, जाहिर सी बात है सर, आपने अगर ऐसी कोई किताब लिखी है मार्गदर्शन के संदर्भ में तो ज़रूर आपका भी इस तरह का बैकग्राउंड रहा होगा, आपने ये सारे मुकाम जो हैं ये हासिल किए होंगे, आपकी जो जर्नी रही होगी वो भी इसी तरीके से कई सारी वेरिएशन के साथ में रही होगी, तो आप उसको उससे भी हमें रूबरू कराएं कि किस तरह से आपने अपनी ये वाला जो मुकाम है उसे हासिल किया और कहाँ से शुरुआत की थी सर आपने?
0: जी, वैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो भी अधिकारी चयनित हुए हैं, जो अभी कई भले सेवानिवृत्त हो गए हैं या सेवारत हैं,
1: हाँ,
0: कमोबेश सबकी कहानी एक जैसी है।
1: हाँ, अच्छा,
0: क्योंकि ज्यादातर अधिकारी है वो ग्रामीण परिवेश के हैं, वो साधारण किसान परिवार से हैं, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि हमें कोई ऐसी एक नौकरी मिल जाए जिससे हम अपने परिवार को और स्वयं का आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन जाएं, उसके बाद में इन परीक्षाओं यानी यूपीएससी और आरपीएससी परीक्षाओं की तरफ रुख करने का
1: जी, उसके लिए भी सर,
0: हाँ, ट्रेडिशन रहा है। मैं भी वैसे ही एक साधारण किसान परिवार से हूँ, मैंने प्राइमरी शिक्षा है वो मेरे गाँव आठमा से की और उसके बाद में मैंने 6वीं 7वीं मेरे ननियाल शिवकर से और फिर 8वीं मैंने सियाणी से, जो हमारे पास में गाँव है वहां से, 9वीं 10वीं मैंने खड़ीन सीनियर सेकेंडरी से और फिर 11वीं और 12वीं मैंने बाड़मेर सीनियर सेकेंडरी से की। 12वीं करने के बाद में मैंने बीएसटीसी कर ली, बीएसटीसी करके मैं थर्ड ग्रेड टीचर बन गया।
1: अच्छा,
0: थर्ड ग्रेड टीचर बनने के बाद में मेरा ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी प्राइवेट है, क्योंकि मैं नियमित सरकारी सेवा में चला गया था तो नियमित अध्ययन को कॉलेज का नहीं कर पाया, मैंने प्राइवेट बीए किया। इस दरमियान 2000 की बात है, आरएएस की भर्ती आई हुई थी तो वहाँ हमारे जो स्टाफ के गुरुजन थे उन्होंने इस बार चर्चा की कि भाई इस भर्ती से, उन्होंने एक बात कही थी कि इस भर्ती से अधिकारी बनते हैं, तो मेरे भी मन में ये जुनून हुआ कि क्यों ना अपन भी प्रयास कर लें।

0: थर्ड ग्रेड टीचर तो है ही, अपने पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रयास तो करते हैं
1: जी।
0: तो मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने पहली बार आरएएस का एग्जाम दिया, मैं प्री पास हो गया, मेन भी मैंने लिखा, लेकिन मैं थोड़े 10-12 नंबरों से रह गया, परंतु फिर उस मुझे लगा कि मैं इस मुकाम को हासिल कर सकता हूँ
1: जी।
0: फिर मैंने 2003 में प्रयास किया और मेरा 120वीं रैंक से चयन हो गया और मैं एक राज्य स्तरीय सेवा में चयनित हो गया
1: जी।
0: लेकिन मुझे लगा कि मुझे और प्रयास करना चाहिए, तो मैंने फिर प्रयास किया और अंत में 2011 में राजस्थान पुलिस सेवा में चयनित हो गया
1: जी।
0: और इस तरह से फिर राजस्थान पुलिस सेवा में चयनित होने के बाद में जनरली हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है राजस्थान पुलिस एकेडमी में
1: जी।
0: वो फील्ड और जो वहाँ की एकेडमिक ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद मैं वृत्ताधिकारी वृत्त भुसावर जिला भरतपुर, वृत्ताधिकारी अकलेरा जिला झालावाड़, वृत्ताधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा, उसके बाद में ATS SOG में
1: जी,
0: फिर अजमेर, उसके बाद में जयपुर, फिर RAC प्रतापगढ़
1: जी,
0: और फिर एडिशनल SP डीग और एडिशनल SP करौली और अब मैं यहाँ पर जोधपुर में पोस्टेड हूँ।
1: सर आपने काफी लंबा सफर तय किया है, हमें बताना पड़ेगा श्रोताओं को, अभी जानकारी थोड़ी हैरानी हुई होगी कि कितना लंबा सफर है, और आपने कोई फिक्स प्लानिंग नहीं की थी जब आपने शुरुआत की, तब आपने ये सोचा था कि आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, आर्थिक रूप से हमें अपने आप को सक्षम बनाना है, परिवार का भरण पोषण करना है, वहां से शुरुआत होते हुए जो आपने ये मुकाम हासिल किया है अब तक, ये बहुत ही शानदार रहा है सर। और जरूर ये जो हमारे युवा अभी सुन रहे होंगे उनको आपसे काफी प्रेरणा भी मिल रही होगी, और जैसा आपने बताया सर आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट रहा जब आपने एक शिक्षक के तौर पर अपनी ये जो है वो जर्नी शुरू की थी, तो ये मुझे लगता है ऐसा लगा कि जैसे आपने छोटे छोटे मुकाम हासिल किए और चलते गए और कारवां बनता गया, ऐसा ही हुआ?
0: बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, मतलब मेरी तरह बहुत से अधिकारी ये सच्चाई है कि हम हमारा कोई टारगेट जब हम ने मान लो 12वीं की है उस समय हमारा कोई ये टारगेट नहीं था कि हम RPSC की या UPSC की हम परीक्षा देंगे, हम इन सेवाओं के लिए प्रयास करेंगे, हमारा तो मात्र ये टारगेट था कि हमें एक ऐसी नौकरी मिले जिसमें हमें आर्थिक रूप से हम स्वावलंबी बन जाए, परिवार का हम सहारा बने और उसके बाद में दूसरी बातों के बारे में सोचे
1: जी।
0: तो बिल्कुल हमने शिक्षक के रूप में जब चयनित हो गए तब हमें ये लगा कि हम अब और कुछ करना चाहिए, फिर हमने ये प्रयास किए और सपना तो ये था कि मैं BSTC कर चुका था तो उसके बाद में BED करके फर्स्ट ग्रेड शिक्षा राजस्थान शिक्षा सेवा में जाना था
1: जी।
0: लेकिन उस तैयारी के साथ साथ ये तैयारी रखी और इधर मेरा चयन हो गया तो हमारे थोड़े सा आत्मविश्वास बढ़ा, हौसला बुलंद हुआ, हमें लगा कि ये हम कर सकते हैं, भले ग्रामीण पृष्ठभूमि से है कुछ भी है लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है जितना इसको बताया जाता है, तो फिर हमने मेहनत की और केवल उस मेहनत की बदौलत एक साधारण किसान परिवार का व्यक्ति होने के नाते इस मुकाम तक पहुंचा हूं।
1: जी बिल्कुल, ऐसे हम देखते हैं ना कि बस पानी के किनारे बैठकर हम ये नहीं सोच सकते कि वो पानी कितना गहरा है, उसमें हमें डुबकी लगानी ही पड़ती है, तो वही आपने भी किया और बहुत ही अच्छा रहा कि आपने ये अलग अलग मुकाम हासिल किए और आपको फिर पता चला कि हाँ ये हम में जो ये हौसला है उससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर,
0: बिल्कुल नया जी, जब किनारे पर बैठते हैं तो पहला ये विश्वास होना चाहिए कि पानी डूबे इतना है नहीं, गले तक हो सकता है तो फिर कूद ही जाना चाहिए,
1: पर बाद में गहराई का एहसास हो जाता है। हाँ सर,
0: यही सोचा कि भाई अब तो इसमें कूद जाना चाहिए, ये इतना गहरा नहीं है जितना हम डूब जाएंगे
1: जी,
0: तो सर, फिर इस हिसाब से मेहनत की और यहाँ तक पहुंचे।
1: पर आप कभी भी संतुष्ट नहीं हुए सर, ये बात माननी पड़ेगी कि आपने जो भी जॉब हासिल की है, आप जिस भी मुकाम पर रहे आपको लगा कि मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, ये बहुत ही शानदार बात है सर। बिल्कुल
0: बिल्कुल, मैं वैसे देखा जाए तो मेरा RAS मैंने 5 बार दिया, 4 बार मैन दिया और मेरा 4 बार ही सिलेक्शन हुआ है, लेकिन रैंक ऊपर नीचे होने के कारण फिर कुछ बीच में 2 बार सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो रैंक पहले से मैं चयनित था उससे नीचे थी तो उसमें नहीं गया
1: जी।
0: कहने का मतलब है जब मेहनत जितनी, यदि कोई परीक्षार्थी है कोई मेहनत कर रहा है
1: जी,
0: तो ईश्वर भी देखता है कि ये इतनी मेहनत कर रहा है तो उस अपनी मेहनत के अनुरूप उसको प्रतिफल ईश्वर जरूर देता है।
1: बिल्कुल,
0: अपन यदि मेहनत ही नहीं करेंगे, अपना प्रयास ही नहीं करेंगे, बिना प्रयास के तो देखो उपलब्धि हासिल हो नहीं सकती, फिर तो बिना प्रयास के उतनी ही अपने को मिलेगी जितने लोगों ने

0: करने वालों छोड़ दिए।
1: हाँ बिल्कुल सर, तो ये जो प्रयास हैं वही हमारी सफलता को दर्शाते हैं कि हमने कितने प्रयास कर लिए हैं, और छोटे छोटे प्रयास तो आपके जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना देते हैं। तो सर आपका क्या प्रयास रहता है कि आप अपने संडे को बहुत ही ऐसा चीयरफुल बना सकें, उसे एक इस अंदाज में बिता सकें कि वो काफ़ी अलग हो, खास हो बाकी दिनों से?
0: ये तो अपना अपना व्यक्तिगत हिसाब से, हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है।
1: जी
0: लेकिन
1: हाँ
0: मेरा तो
1: बिल्कुल।
0: यही कहना है कि आज के समय में ज्यादातर लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय जाया करते हैं।
1: जी
0: तो इसके बजाय मेरा तो यही संदेश है युवाओं को कि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय जाया नहीं करें
1: जी
0: और अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सजग रहें और मेहनत करें। विशेष रूप से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हो, उन युवाओं को यही कहना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं,
1: जी
0: उनका मेरा तो यही संदेश है कि आप मेहनत करें, अपनी मेहनत में अपने प्रयासों में कमी नहीं रखें।
1: जी
0: बाद में जो भी है वो ईश्वर आपके कर्मों के, आपके वो कर्मों के अनुरूप आपको जरूर फल देगा, इसमें कोई शक नहीं है,
1: जी
0: जैसा कि गीता में लिखा है।
1: जी बिल्कुल सर, जहाँ आपको पहुँचना लिखा है वहाँ तो आप पहुँचेंगे ही, बस हमें प्रयास तो करना पड़ेगा ही, वरना कैसे पहुँचा जा सकता है? उस साइड में बैठ के, किनारे में बैठ के हम नहीं सोच सकते कि हम उस किनारे पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल,
0: जी
1: तो आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और ये भी सच है कि आपने जो ये बताया, जो मार्गदर्शन हमारे श्रोताओं को, युवाओं को सुनने को मिला है, जानने को मिला है, वो बहुत ही शानदार है सर।
0: धन्यवाद नेहा जी, आपने और ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया
1: जी
0: और आपके श्रोताओं से मेरे विचार साझा करने के लिए मुझे अवसर दिया। इसके लिए आपका और ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत आभार।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका भी, आप हमसे जुड़े, आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला और हमारे श्रोताओं को भी अपनी इस जर्नी से रूबरू कराया, उसके लिए बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: जी श्रोताओं, हमारे साथ थे आज के हमारे मेहमान के, रविवार के गेस्ट स्टार, ADCP हेडक्वार्टर जोधपुर से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री गुमनाराम जी। उनसे हमने बातचीत की और उनके संडे को कैसे उन्होंने खास बनाया, किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी जर्नी जो थी, अपना जो जीवन संघर्ष है वो पहुंचा है और मुकाम हासिल किया है, उस पर हमने बातचीत की थी। अभी फ़िलहाल हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

और बिल्कुल ये गीत हमारे आज के गेस्ट स्टार श्री गुमनाराम जी की अपनी पसंद का ये गीत हम सभी सुनेंगे, हमारे श्रोताओं को भी सुनाएंगे।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज के दिन की हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज भारतीय सिनेमा और साहित्य के ऐसे रचनाकार जिन्होंने अपनी लेखनी और फिल्मों के माध्यम से सामाजिक समानता, मानवता और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया, ख्वाजा अहमद अब्बास की जयंती हम मना रहे हैं। और ख्वाजा अहमद अब्बास, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की थी। लंबे समय तक साप्ताहिक स्तंभ उन्होंने लिखा था और अपनी निर्भीक और जन पक्षधर दृष्टि के लिए वे प्रसिद्ध रहे थे। फिल्म जगत में उनका योगदान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों की कहानी लिखी है, पटकथा लिखी है और निर्देशन भी किया है, जैसे कि आवारा, श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया और उनका नाम उससे जुड़ा रहा। वे भारतीय समानांतर सिनेमा के अग्रदूतों में भी गिने जाते हैं और उनकी रचनाओं में जो है आम आदमी के संघर्ष को, सामाजिक न्याय को, मानवीय संवेदनाओं को स्थान मिला था। उनके उपन्यास, लघु कथाएं और लेख भी उन्होंने काफ़ी लिखे हैं जिनमें समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनकी आवाज़ को प्रमुखता मिली और साथ ही साथ उन्हें भारतीय सिनेमा और साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सहित अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए थे। 7 जून 1914 को जन्मे ख्वाजा अहमद अब्बास भारतीय सिनेमा, साहित्य और पत्रकारिता के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर थे जिन्होंने अपनी लेखनी को समाज की आवाज़ बनाया था।

साथ ही साथ आज जन्मदिन मना रहे हैं हम महेश भूपति सर का। भारतीय टेनिस के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन 7 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। और वे भारत के पहले ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था और भारतीय खेल जगत को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई थी। दोस्तों, महेश भूपति ने युगल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में अनेक ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। उनकी और लिएंडर पेस की जो जोड़ी है भारतीय टेनिस इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है और दोनों ने मिलकर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का गौरव बढ़ाया है। महेश भूपति ने अपने खेल कौशल, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर भारतीय युवाओं को जो खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, दोस्तों उन्हें खेल जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सहित कई सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। उन्हें महेश भूपति सर को, भारतीय टेनिस के गौरव महान खिलाड़ी जो ये रहे हैं, उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हम आकाशवाणी टीम की तरफ से प्रेषित करते हैं।

है बसप्पा दानप्पा जत्ती की, जिनका आज ही के दिन साल 2002 में निधन हुआ था। भारत के पांचवें उपराष्ट्रपति ये रहे थे। साथ ही साथ 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत रहे। अपनी साथ की ईमानदारी और जनसेवा के लिए हमेशा ये जाने जाते रहे। साथ ही साथ इन्होंने मैसूर, जो कि वर्तमान कर्नाटक है, उसके मुख्यमंत्री, पुदुचेरी के उपराज्यपाल और उड़ीसा के राज्यपाल भी ये रहे थे और ये कार्यभार इन्होंने बखूबी संभाला था। साथ ही साथ दोस्तों, आज का दिन याद करने का दिन है नटराज रामकृष्ण को। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के महान आचार्य भी थे, शोधकर्ता भी थे और खास तौर पर इन्होंने नृत्य के पुनर्जागरण का जो महत्वपूर्ण कार्य संभाला था उसके लिए ये जाने जाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय नृत्य परंपराओं के लिए समर्पित कर दिया था। और खास तौर पर चूंकि ये आंध्र प्रदेश के थे तो वहां की जो विलुप्त प्राय नृत्य शैलियां थी उसके संरक्षण के लिए इन्होंने कार्य किया था, जैसे कि आंध्र नाट्यम और पेरिनी शिव तांडवम। और इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी जो आज भी नृत्य पे शोध करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बने हुए हैं। आज ही के दिन साल 2011 में इनका निधन हुआ था, लेकिन आज हम इन्हें खास तौर पर किसी भी विरासत को पुनः जीवन बनाने का अगर प्रयास करने के लिए याद करते हैं तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बिल्कुल नृत्य की हर धड़कन में जिसकी साधना बोलती है, वहीं संस्कृति की हर धड़कन में उन्हीं की स्मृति जीवित रहती है। तो बिल्कुल ऐसे कर्मयोगी को हम शत-शत प्रणाम करते हैं और आपको ये खूबसूरत सा गीत नमस्कार कार्यक्रम में सुनवाते हैं।

0: दोस्तों इसी के साथ कड़ी की सुइयों ने इशारा करना शुरू कर दिया है कि आज के नमस्कार से लेनी होगी हमें इजाजत। तो आज के इस प्रोग्राम से आपकी दोस्त स्वाति
1: और निहारा अंकावत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें और गीत।

बातें और गीत बिल्कुल ट्यून हो चुका है ये खास प्रोग्राम 102.1 FM सन सिटी पे आज के इस हैप्पी हैप्पी संडे संडे मॉर्निंग में। और ये जो संडे संडे वाली मॉर्निंग वाइब है वो आज की

0: हमारी बातों में भी आपको सुनाई देगी और महसूस भी होगी। और आज के इस खूबसूरत सफर में आपके हम सफर के रूप में मेरे साथ, मेरे सफर में भी है नेहा राकावत
1: और मेरे साथ में है स्वाति भंसाली।
0: तो बिल्कुल आज के इस खूबसूरत सफर को बातों और गीत से पूरा करेंगे। फिलहाल ये प्रोग्राम का पहला आगाज करता हुआ गीत धमाकेदार सा आपके लिए।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके, सीमेंट

0: ECIL.co.in पर।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
2: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
3: इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें और गीत। और इस अंतराल से पहले वो जो खास गाना चल रहा था इलू इलू, वैसे मेरे मन में तो ये सवाल, हालांकि गाने में बहुत बताया लेकिन हमेशा ये दौड़ता रहता है कि ये इलू इलू आखिर है क्या।
4: देखो ऐसा है कि स्वाति, मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो इन्होंने बहुत खुलेआम ऐसे ना खुलेआम बोलते गए हैं ये शब्द, ये जो वाक्य हम आमतौर पर देखें तो हमसे बोला ही नहीं जाता जिंदगी में।
3: हाँ,
4: ये जो ये बोलते गए इसका एक्रोनिम सेट कर लिया इन्होंने कि ईलू, जो ये खुलेआम गाए जा रहे हैं। और वो विजुलाइजेशन देखो इस गीत का कि कहाँ उन्होंने खुली वादियां जो एकदम होते ना
3: हरियाली,
4: हाँ वो वैसा वाला सारे इसके दृश्य हमें अभी आंखों के सामने आ रहे हैं, तो वैसा ये सॉन्ग रहा है। लेकिन ये आमतौर पे बात इतनी इजीली बोली नहीं जाती जो इन्होंने गाने में बोल दिया है।
3: और इस फिल्म की तो एक खास बात और भी थी, इसमें एक दोस्ती की मिसाल कायम की गई थी।
4: अच्छा,
3: हाँ याद आ रही है, दो दिग्गज कलाकार अपने समय के जिनके बीच बहुत सालों तक बातचीत नहीं हुई थी।
4: इसमें दिलीप कुमार है और
3: बिल्कुल और राजकुमार।
4: हाँ राजकुमार,
3: बिल्कुल दिलीप कुमार और राजकुमार जब सालों बाद एक साथ जब पर्दे पर आए तो मानो तहलका मच गया था। और ये जो गाना था इससे डेब्यू किया था विवेक मिश्रण और मनीषा कोइराला ने भी इस पिक्चर में। और एक और डेब्यू मुझे याद आ रहा है जो फिल्में थी, वैसे देखो हर बार कोई ना कोई जो नयापन है वो हम सबको अच्छा लगता है। आयशा जुल्का जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध हीरोइन रही हैं, उन्होंने डेब्यू किया था फिल्म कुर्बान से और उनके ऑपोजिट थे सलमान खान। और इस फिल्म के सारे ही गाने वैसे तो बहुत खूबसूरत से थे लेकिन एक जो गीत मुझे अभी मेरे कान में बजने लगा है कुछ कुछ, सत्येंद्र उसको सामने से बजाना शुरू कर रहे हैं और जो आवाज़ें मेरे कान में आ रही है वो धरती चांद सितारों के साथ, अगर हम अपने दिल की धड़कनों को जोड़ दें
4: उन्हीं वादियों के साथ,
3: हाँ हाँ हाँ, तो क्या खूबसूरत गाना आता है।

0: गीत सुना हमने, तू जब जब मुझे पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदियां किनारे, और उस पे उन्होंने पूरा गीत जो है इसी लाइन पर, इसी फ्रेज पे उन्होंने पूरा गीत फिल्मा दिया है। और देखो ना स्वाति, जब भी हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ शुरुआत हुई, उसकी जर्नी हम देखते हैं, तो वो एक ही मुद्दे पर, एक ही बात पर टिकी होती है, और उसके इर्द गिर्द पूरा वो समा जो है, वो कारवा जो है, वो बंद आ जाता है।
1: बिल्कुल नहीं, मैं वैसे तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ। जो मैंने जो सवाल तुमसे पूछा था ना, कि भले ही हमारे पहले गाने में बात हुई थी, लेकिन मेरे मन में ये सवाल अटका हुआ है अभी तक भी, कि आखिर ये इलू इलू है क्या। तुम मुझे मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही हो, चाहे नदियां, धरती, चांद, सितारे कहीं भी घुमा रही हो, लेकिन मेरा सवाल तो वैसे वही है कि ये इलू इलू आखिर है क्या।
0: वो तो हमारे श्रोताओं को भी अच्छे से पता होगा, लेकिन मैंने ये जो उन्होंने बताया कि ये इलू इलू उन्होंने इतना इतना ओपनली, इतना फ्रेंकली उसको फिल्माकर और खुलेआम उसको बोला है, उस पे नाचे हैं, गाया है इसको, तो कुछ तो इसका मतलब होगा, थोड़ा अच्छा
1: वैसे
0: ही होगा।
1: अगर हम एक संदर्भ में देखें तो ये जो इलू शब्द है, ये प्यार को दर्शाने के लिए या मोहब्बत को दर्शाने के लिए इसका यूज़ होता है। और मुझे याद आ रही है एक फिल्म 1997 में आई थी, मोहब्बत, और इसमें माधुरी दीक्षित, संजय कपूर और अक्षय खन्ना तो थे ही, और बहुत ज़्यादा ये फिल्म जो है वो अपनी अलग सी कहानी के लिए फेमस हुई थी। लेकिन इस फिल्म का भी ओरिजिनल नाम मोहब्बत नहीं था,
0: फिर
1: इस फिल्म का नाम था प्रेम पूजा, जबकि ये शुरू हुई थी 1993 में, और तब माधुरी दीक्षित के साथ थे इसमें सलमान खान और ऋषि कपूर। लेकिन बाद में स्टार कास्ट चेंज होती रही, फिल्म कुछ बंद हुई, फिर से चालू हुई, और उसके बाद स्टार कास्ट हो गई चेंज, अक्षय खन्ना और संजय कपूर के साथ थी इसमें माधुरी दीक्षित। और इस फिल्म में वैसे तो बहुत सारे गाने थे, और एक जो गाना था उसकी शूटिंग तो कनाडा के वैंकूवर में हुई थी, वाइट रॉक में, और ये गाना बहुत ज़्यादा, ओ बेबी डोंट ब्रेक माय हार्ट, ये लोकप्रिय हुआ था। और उसकी जो डांस स्टाइल थी वो बिल्कुल अलहदा थी, और माधुरी दीक्षित के साथ तो डांस अपने आप में करना एक अलग अनुभव होता है हर हीरो के लिए। लेकिन मैं जो गाना अपने लिसनर्स को अब सुनवाने वाली हूँ इसी फिल्म से, यानी मोहब्बत से, वो विनोद राठौड़ और कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत आवाज़ से सजा हुआ है, प्यार किए जाए।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: कई बार हम कहते हैं स्वाति कि बातें जो करते हैं हम वो ओपनली क्या क्या करें, और सब चीज़ें हमने अभी जो गाना सुना था उससे पहले, सबसे पहले जो सुना था इलू इलू, वो उसमें ओपनली बोल रहे थे कि ये हमने ये किया है, इजहार कर लिया है, वो ओपनली उसको बोले जा रहे हैं। और अभी ये जो गाना सुना उसमें एकदम उसका विरोधाभास आ गया है, जैसे देख रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हमने प्यार किया है चोरी चोरी, इजहार किया है चोरी चोरी, तो इतना चोरी चोरी ये कैसे काम कर रहे हैं, छुपे रुस्तम है ये बहुत। लेकिन तुम मुझसे ओपनली कब से ऑन एयर भी ऑफ एयर भी तुमसे ये सवाल करती जा रही हो कि इलू इलू क्या है।
5: बिल्कुल, ये सवाल देखो मेरे मन में तो बहुत जाहिर तौर पर आ रहा है, क्योंकि जैसे तुमने कहा कि ये एब्रिवेशन है आई लव यू का छोटा,
4: हाँ।
5: तो फिर अगर सीधी साधी मैं इंग्लिश अगर थोड़ी जानती हूँ तो आई एल वाई होना चाहिए, लेकिन तुमने इसे बना दिया है आई एल यू इलू इलू, तो फिर सवाल तो मेरे मन में आना जाहिर तौर पर बनता ही है ना।
4: तो ये उस समय का जेंजी है, अभी हमारी जो जेंजी चल रही है ना, उन्होंने अपने शॉर्ट टर्म्स जो ऐसे बना रखे,
5: हाँ।
4: वैसे ही उस जमाने में जो जब ये गीत फिल्माया गया था तब भी मुझे लगता है लिरिसिस्ट के दिमाग में यही चीज चल रही होगी कि कैसे मैं इसको कुछ स्पेशल बनाऊं, और उसी से सोच लिया होगा कुछ।
5: लेकिन सिर्फ ये जो आई एल यू है ना,
4: हाँ।
5: इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर तुम सर्च करोगी ना,
4: हाँ।
5: तो पता चलेगा कि ये आई एल यू का जो मतलब है वो बहुत ज्यादा गहरे अर्थों में है। लेकिन
4: श्रोताओं को सर्च करने दें,
5: हाँ श्रोता भी सर्च करेंगे, हम भी बताएंगे हम यहाँ किस लिए बैठे। लेकिन उससे पहले बात जरा से हो जाए इस जो खूबसूरत मौसम है उसकी, क्योंकि कई बार जो प्रेम है उसका सीधा सीधा संबंध मौसम से भी होता है। देखो ना, जैसे जैसे मौसम में बहार आने लगती है वैसे वैसे प्रेम की बात भी परवान चढ़ने लगती है। और मुझे याद आ रहा है एक खास गाना जो किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, लेकिन फिल्म का जो नाम है वो अपने आप में प्रेम से बिल्कुल उल्टा है। सोचो कौन सा,
4: प्रेम से उल्टा।
5: अगर हम किसी पे कर दे आक्रमण,
4: आक्रमण, ओके,
5: हाँ, तो बिल्कुल वही आक्रमण जिसका गाना हम लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: फिल आक्रमण से ये खूबसूरत सा गीत हमने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुना था और मौसम की खूबसूरती तो खैर इस गाने में बताई गई थी, लेकिन वो जो सवाल जिसके बारे में मैं इस प्रोग्राम के शुरू से ही बात कर रही हूँ कि ये इलू इलू आखिर है क्या, वैसे सामान्य संदर्भों में तो तुमने बताई दिया और गाने में भी बहुत खूबसूरती से बताया गया था कि प्रेम के संदर्भ में यूज होता है, लेकिन मैं लोगों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ उस खास एब्रिवेशन की तरफ ILU, क्योंकि सामान्य तौर पे तो मैंने बताई दिया कि अगर आई लव यू को अगर हम एब्रिवेट करेंगे तो फिर वो ILY होना चाहिए, हम बोल रहे हैं इलू यानी ILU। तो ILU खास तौर पर इंटरनेशनल लेबर यूनियन के लिए भी यूज होता है, जहां पर हम जो यूनाइटेड नेशन है वो मजदूरों के राइट्स के लिए बात करती है और 1 मई को लेबर डे भी मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल लेबर यूनियन का जो एब्रिवेशन है वो भी है ILU। साथ ही साथ आज हम अगर इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक यूनियन की बात करें, जो कि एक बहुत ही रेयर इंडस्ट्री है, उसके संदर्भ में बात करते हैं तब भी हम ILU की बात करते हैं। और आजकल जो यंगस्टर्स में इंडिपेंडेंट रहने का जो कल्चर चला है वो भी ILU यानी कि इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट, और ये हाउसिंग सर्विसेज के लिए भी यूज होता है, जहां पर अकेले रहने की जो यूनिट्स है उनमें जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके लिए भी ILU यानी कि इंडिपेंडेंट सर्विस यूनिट के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो बहुत सारे संदर्भ है, वैसे ये जो मेरे दिमाग में कीड़ा कुलबुला रहा था उसने अच्छे जवाब तो दिए हैं ना?
2: बिल्कुल दिए हैं। अब कहां मैं प्रेम की बात पे अटकी हुई थी, इलू को एक ही तरह से सोच रही थी, कहां आपने इसके नजरिए बदल दिए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं लेकर मुझे, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि कहां जाना चाहिए अभी मुझे। अभी मुझे लगता है हमें उस दौर में जाना चाहिए फिर से, उसी फिल्मी दुनिया में जहां आपने हम पर आक्रमण किया था प्रेम के ऑपोजिट में। तो आक्रमण जो हुआ वो बॉर्डर पे हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल आक्रमण हुआ था, ये 1971 का समय था और बहुत मुश्किल दौर था हमारे भारत के लिए। लेकिन अगर इस फिल्म की बात करूं बॉर्डर की, तो इसमें भी बहुत खूबसूरत गीत जिसने मोहब्बत को अलग एक परवान दी है वो मुझे याद आ रहा है, हमें जब से मोहब्बत हो गई दुनिया खूबसूरत हो गई। और सोचो ना, दुनिया खूबसूरत लगने ही लगती है, हमारा नजरिया भी बदल जाता है, नजारे भी बदल जाते हैं जब हमारी नजर से हमें खूबसूरत बातें सुनाई देने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं, दिल में जो प्यार है उसका सागर हिलोरे मारने लगता है। तो हमें जब से मोहब्बत हो गई है,

0: बिल्कुल स्वाति, ये जो गीत है जिसमें इनका नज़रिया बदल गया है, इन्हें दुनिया जो है वो खूबसूरत लग रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें मोहब्बत हो गई है. तो प्रेम जो है वो आपको अलग नज़रिया देता है और देखने का जो आपका तरीका है वो पूरा बदल देता है. कैसे आपको हर चीज़ जो है उसमें अलग खूबी नज़र आने लगती है, आप उसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं, नेगेटिव साइड को इग्नोर करने लग जाते हैं, आपके सामने वो एग्जिस्ट ही नहीं करती.
1: सोचो ना, देखो ये जो एक सिंपल सी चीज़ थी इलू इलू, इसमें कितनी खूबसूरती नजर आने लग गई कि हम बात करने लगे और इसके इतने मतलब हमें पता चले. लेकिन आप सोचो कि जब आप ये इस प्रेम को, इस मोहब्बत को अपने देश से, अपने देश की मिट्टी से, अपनी संस्कृति से जब करने लगते हो, तो कितना हमारे अंदर जो है गौरव का एक भाव है वो भी भर जाता है. तो मुझे ये जो इलू इलू है इसका एक और मतलब, अगर हमारे देश के संदर्भ में कहूं, अगर इलू का भाव यहां पर आ जाए, आई एल यू, कौन सा सोचो
0: क्या हो सकता है?
1: आई से इंटेग्रिटी,
0: ओके,
1: एल से लव, यू से यूनिटी. तो बिल्कुल सोचो, इस देश में अगर हम सब एक साथ प्यार और मोहब्बत से रहें, तो फिर क्या हम है राही प्यार के नहीं कहलाएंगे?
0: बिल्कुल.
1: तो हम है राही अगर प्यार के हैं, तो इसी फिल्म का खूबसूरत सा गीत जो हमारे सफर को मंजिल की ओर ले जाने में हमारा साथ देगा. और हम सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम इस वक्त ट्यून्ड है 102.1 FM सन सिटी पर, बातें और गीत.

0: बिल्कुल, ये सफर कट ही गया आपके साथ चलने से, समय का पता ही नहीं चला, लेकिन घड़ी की सुइयों ने तो इशारा करना शुरू कर दिया है कि आपसे आज के इस प्रोग्राम से लेनी होगी विदा। तो कार्यक्रम इस वक्त ट्यून था बातें और गीत आपके साथ जो 102.1 FM सन सिटी पे। आज के इस प्रोग्राम में आपके हम सफर थे स्वाति बंसाली
1: और निहारा कवत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें और गीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनवार।

मनवार कार्यक्रम सुनणारा सगळा हेताळू श्रोतांवर घणेमान स्वागत अभिनंदन। गीत संगीत और रीत प्रीत रो रथ लेयर हाजिर हूँ आपरो शब्द सारथी सत्येंद्र चारण। स्वीकार करो मारा राम राम। साथीड़ा मनवार कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिन माए आपने सुनन न मिले मायड़ भाषारी मठोट और मिजाज। मनवार कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिन माए में आप ताई पूक्ति करा लोक रंगरी बानगी और एक सौ सवाया एक लोक गीत। तो रेडियो री फ्रीक्वेंसी जकी है वार सेट कर ले रहा हूँ 102.1 FM माथे और जुड़िया रहे वो FM सनसिटी सुम। मनवार कार्यक्रम रो पहलो गीत आपरी नजर।

पीहू पीहू बोले पिया मोरियो, मोरियो तो बोले लाइज मोर रो काम है बोलनो। ओ गीत जो बार आप सुनियो ओ एक राजस्थानी वीर गीत हो जके रमाए मोरिय ने संबोधित कर नायिका जके हेवा कुदरी बात रखे, पण मोरिया बोल जावे ला पर अटे कहावत भी चालिया करे, जने कोई न की सबक मिले या किनरो कोई नुकसान हुए जने कहे कि इनरा तो मोरिया बोलगा के राज मत खोल जे मोरिया बोल जावेला, ध्यान थू राख जे मोरिया बोल जावेला, देख कहीं करे काम धंधो वो परदेसी, रात दिन ताक जे मोरिया बोल जावेला। के जिंदगानी अठे ठोकरांसू भरियोडी, देखने चाल जे मोरिया बोल जावेला, मिर्च नींबू करो टोटकारो अठे डर है, आ बला टाल जे मोरिया बोल जावेला। के सांप फिरता फिरे तू संभाल इंडा ने, सांप फिरता फिरे तू संभाल इंडा ने, छेप दे काल जे मोरिया बोल जावेला। आओ सुना मोरिया सु जुड़ियोड़ो ओ एक और गीत।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS वचरन जीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: पथरी प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

सदड़ा अंतराल सो पहला आप सुने हा गीत मोर बोले ओ मलजी आबू रे पाड़ा में, मोर बोले ओ मलजी हीरो री धरती में। सदड़ा मोर भले आबू रे पाड़ा में बोले के भलाई दक्कन रे पठार माथे बोले के भलाई अमेजन रे विशाल जंगड़ा में बोले मोर तो बोले लाइज क्योंकि मोर रो तो काम है बोलनो। वो कहवे नी के मैं मगरेरा मोरिया तालर चूण करंत, मैं मगरेरा मोरिया तालर चूण करंत, रुत आया बोला नहीं तो हियो फूट मरंत। और आज की मोर रे वास्ते बात है, आ बात कवियां सारू भी लागू है क्योंकि सही मौको आया माते सही रुत आया माते यदि मोर नहीं बोले तो वो हियो फूट मरे। उन्हीं बात यदि सही समय माते यदि कवि नहीं बोले वो खुदरी कलम ने नहीं आजमावे तो वह एक कवि री मृत्यु होया करे।

में आप बहन बेटियां नहीं पूरी पढ़ाई करावनी है, जितनी पढ़ाई आप बेटा ने और भैया ने करावा, क्योंकि बेटा बेटी एक समान दोनों ही है घर रिशान। वो कहवे नहीं के एक पढ़ी लिखी बेटी दो घराने रोशन करिया करे। साथीडा शिक्षा आंपारो मूल अधिकार है, शिक्षा आंपारो वो अर्जित धन है जिनरो कदई बंटवारो नहीं होया करे।

0: सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।

0: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
1: मोजड़ियां मोजड़ियां गोरी काई बिलख है, मैं बिना धरती तरस है, मेवड़लो होवण दे मोजड़ियां दिराऊं थने मखमल री, तू तो मेवड़लो होवण दे। साची बात है, आंपरी मरुधरा माते मैं यानी के बरसात जगी है बा एक उत्सव रजियां होया करे। मैंने आप पर अठे पावणो मानी जे, आप पर अठे कावत है के मैं अर पावणा कद कद आवे। इन गीत माए भी आदमी खुदरी घराड़ी ने कहवे है कि मैं थने सगली चीजा दिरा देऊं एकर बरसात होवण दे, क्योंकि आप पर अठे आजीविका रा साधन जका है वे घना नी हा। आप पर अठे खाली खेती बाड़ी रो काम हो तो, और वह खेती बाड़ी भी जकी है वह खाली चौमासे रमायने बरसाती फसलाई ज होती ही। संसार री जठे सगली भाषा वा रमायने बरसात जकी है वह स्त्रीलिंग रूप में मानी जाए। बरसात, बिरखा, रानी जड़ा अलग अलग रैन अलग अलग नाम है। वटी आप पर राजस्थान रमाई बरसात ने मेह यानी कि पुल्लिंग, आप पर अठे बरखा रानी नहीं है, आप पर अठे मेह जको है वो बाबो है।

और साथीड़ा मनवार कार्यक्रम माए अबे चालता चालता की लोकरी प्रसिद्ध कहावता आपरी नजर करूं। एक कहावत है कि आपरी पीठ खुद ने नहीं दिखिया करे, मतलब खुदरी जकी कमियां है वे खुद ने नहीं दिखे, एड़ी बात आप की नहीं कहवा उन टाइम आ कहावत जकी है आपा उपयोग कर सका। एक कहावत है कि बागा में दाख पाके जद कागला रा गला पाके, मतलब सही टाइम आवे जद आप पर खुदरो की दूजो नुकसान हो जावे। एक कहावत है कि कागा रे बागा हुए तो उड़ता रे घेर पड़े, मतलब कोई आदमी है जिसके कन कोई साधन संपन्न नहीं है वो और झूठी यदि कसीदा पढ़ता रहे वे जन, यदि कागला रे कपड़ा हुए कागला रे यदि बागा होता तो यदि वे उड़ता तो उन टाइम घेर जका है वे हेटा पड़ता, मतलब संपन्नता यदि होती तो बात छानी नहीं रे होती। ये कहावत है कि हूं बा चिड़कली कोनी जकी हरड़ दे उड़जा, मतलब इतो कमजोर नहीं हो कि आसानी हूं हार मान लू। एक कहावत है कि बड़ में बोलतो बोलतो पिंपल में बोलन लाग जावे, मतलब एक बात करता करता एक प्रसंग बतावता बतावता अचानक ही कोई दूजे प्रसंग में जाप रहे और लाडली बात भूल जावे, जने आ कहावत काम में लिया करे कि बड़ में बोलतो बोलतो पिंपल में बोलन लाग जा। एक कहावत है कि दूध दही रा पावना छाच ने अड़खावना, मतलब जका पावना रा दूध दही स्वागत होता है आज वे छाच ने अड़खावना है उन्होंने छाच नहीं गाले क्योंकि एक समय रे पछे आतिथ्य रमाए स्वागत सत्कार रमाए कमी आ जाया करे उन टाइम आ कहावत बोलिया करे। एक कहावत है के मोठारो पीसणो और के सासुरो रूसणो, मतलब मोठ पीसणो जितनी सामान्य बात है बीती सामान्य बात है, सासुरो रूसणो ये दोनों ही घनी सामान्य बात है।

तो साथीड़ा ओहो आज रो मनवार कार्यक्रम रंग कोरियन ने लेर में हाजिर हुयो हो आप रो शब्द सारथी सत्येंद्र चारण कार्यक्रम रो बखत अबे अठाईस पूरो वह तो मने दिराव सीख राम राम सा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनवार। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब समाचार दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण

0: कृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंधी, गुलजार के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैकमेल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुहाना सफर, इस फिल्म का गीत आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार

0: था कि निकले एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार की संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजें हैं, युगल स्वर हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत, शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है कन्यादान फिल्म से। ये गीत है

प्रेम कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आजी बर्मन ने संगीत बद किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस कुछ ही पलों में हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ ही ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यार से पढ़िएगा। प्यार से पढ़ा ना आपने? मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत ने आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। हाँ तो हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना? प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही इस सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में।

तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज के इस सफर पर जाने को? हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे सभी प्रिय श्रोताओं ने मुझे आज पहली बार सुरीला सफर शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं बड़े प्यार से बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे भी अपना साथी स्वीकारने के लिए।

कुछ साथियों ने तो मुझे पायलट घोषित किया है। जी हाँ, क्योंकि हम सुरीला सफर लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफर की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ श्रोता मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश भेज रहे हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नए उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफर लेकर आ रही हैं तो स्वागत। और विविध भारती का प्रसारण हवा के संग संग जब होता है तब खुशियां ही खुशियां दामन में समा जाती है। जिया बेकरार होने के साथ बहार छा जाती है, भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं, बाग की हर कली खिलने लगती है, तब ये गीत गूंज उठते हैं। कुछ गीतों के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि इन हवाओं में इन फिजाओं में आजा आजा रे तुझको विविध भारती का प्यार पुकारे। क्या बात है,

तो श्रोताओं, सबसे पहले आपके लिए हम इबारत भी तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ ली है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर जरूर सुनाएंगे। कुछ श्रोता जो कुछ देरी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब से तेरी आहट उतरी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आंख चुराए फिरती हूं मैं सबसे तेरे नाम पर। आंचल में भर ली है मैंने खुशियां इस संसार की, कलियां खिला दी तूने मेरे गोरे अंग में, जियरा ने तेरी यादों में कैसी सांवरी महफिल सजाई है। दो मन थे जो दूर दूर तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक डोर बंधाई है। आग ओढ़कर पिघले जवानी, चांदनी भी शर्मा जाए, किसी के होठों पर मेरा नाम 100 बार उभरा है। आंखें चार हुई तो जैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर ने चुपके से प्रेम दीपक वारा है। जा रे जा कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ, हर इनकार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संगमरमर सा चेहरा तेरा, पानी सा निर्मल मन है, हवा ने तेरी खुशबू को हर सू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रहे हो क्यों दिल के कोमल तारों को, इंतजार की लंबी रातों ने सपना सवारा है। सीने के सुर्ख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है, हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुंची हूँ, अब मेरी हर धड़कन ने बस तुझको ही पुकारा है।

जी हाँ श्रोताओं, ये थी आज की इबारत एक कविता के रूप में, प्यार से ओतप्रोत। हाँ, प्यार से भरी बातें, प्यार से भरी है इबारत। एक स्त्री का मन जब प्यार से भर जाता है तो हवा, पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं, बस हर पल मिलन का इंतजार रहने लगता है। अनछुआ सा प्यार जो सिर्फ नजरों से ही ऐसी छुवन दे जाता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, मन बस में नहीं रहता, बदन का तार तार पिघला देता है। वैसे प्यार तो है ही इस इबारत में, पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है, जिसके आने का हमें इंतजार है अब बेसब्री से, है ना, जिसके बिना हमारी अगन कम नहीं होने वाली है। आप बताते चलिए, सुरीले सफर का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक श्रोता कह रही है कि प्यार की गली बहुत सकरी होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसे पुरानी आहट लिए चुभने लगती है, उनकी प्रेम कहानी आंखों द्वारा खारा पानी बन बहने लगती है, अपने आप से आंखें चुराने लगते महबूब के नाम का आंचल ओढ़ फिरते हैं, फिर चमन में कलियां खिले या कांटे मिले उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उन्होंने एक गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है। फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनवाने वाले हैं, उसी शब्द पर आधारित। जी तो, लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख भेजिए। और इस फिल्म में ये एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है।

0: सजा है सेहत का दस्तरखान स्वच्छता की आई है दावत नारी वाटिका में आज फिर से महकेगी जिंदगी की हर आदत सखियों आप सभी का दिली तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के अपने पसंदीदा प्रोग्राम नारी वाटिका में जहां सजेगा सेहत और स्वच्छता का अंदाज नमस्कार खुशामदीद मैं हूं आपकी अपनी रेडियो सखी समीना और मेरे साथ हैं
1: बसंत कंवर
0: तो एक बार पुनः स्वीकार कीजिए हमारा
1: का
0: प्यार भरा नमस्कार
1: सखियों आज नारी वाटिका के इस खूबसूरत आंगन में हम सिर्फ एक शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं बल्कि एक नई सोच का आगाज कर रहे हैं आज के हमारे नारी वाटिका के इस अंक का केंद्र बिंदु है सेहत का दस्तरखान और स्वच्छता की दावत जहां सेहत स्वाद बनेगी और स्वच्छता हमारी सबसे खूबसूरत आदत तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और सेहतमंद कल की नींव रखते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ

0: बसंत दावत इश्क तो हमने दे दी सखियों को और साथ में हमने बात की है कि हम मोहब्बत के साथ में सेहत की भी परवाह करते हैं.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि कहा जाता है कि मोहब्बत हो या सेहत, हर एक रास्ता रसोई से ही होकर के गुजरता है. और जहाँ सलीका हो साफ सफाई का, वहाँ खुदा भी दुआ कबूल करता है.
1: बिल्कुल समीना. कहते हैं निवाला सिर्फ पेट नहीं भरता, ये वो धागा है जिससे पूरा परिवार आपस में जुड़ता है.
0: बिल्कुल. और जब परिवार के जुड़ने की बात आती है तो हम इस खूबसूरत आंगन की अगर हम बात करें, हमारी नारी वाटिका के आंगन की बात करें, तो एक बहुत ही जरूरी बात जो है हम अपनी सखियों से यही कहेंगे कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ हमारे दिल से जुड़ी नहीं है, वो हमारे पेट के रास्ते से होकर के गुजरेगी और हमारी सखियों के दिल तक पहुंचेगी. तो वैसे भी कहा जाता है कि परिवार के दिल का रास्ता पेट से होकर के गुजरता है, लेकिन वो रास्ता तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें सेहत और सुरक्षा का तड़का नहीं लगाया जाता. अब बसंत तुम ये बोलोगी कि आज इतनी सारी बातें सेहत और सुरक्षा की क्यों? क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस.
1: सखियों, प्रति वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी और पहली बार इसे 7 जून 2019 को मनाया गया था. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है. खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, उसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक जीवाणु, रसायन या अशुद्धियां ना हो. असुरक्षित भोजन से अनेक प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं जिससे मानव स्वास्थ्य

0: पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो बसंत। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि दुनिया भर में लाखों लोग प्रतिवर्ष दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ जाते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए और खाद्य उत्पादन से लेकर के उपभोग तक करने के लिए प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा को सुनिश्चित करना और इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य ही यही था कि किस तरह से ये सारी बातें सुनिश्चित की जाए।
2: सखियो, इस दिवस के माध्यम से खाद्य उत्पादकों, व्यापारियों, सरकारों और उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है कि सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य की आधारशिला है। अतः विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है कि हम स्वच्छ, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन को अपनाएं तथा खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करके स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दें।
1: बिल्कुल योगदान तो देंगे और साथ में हमारा योगदान भी ये है कि हम अपनी सखियों को प्यारे प्यारे नगमे भी सुनवाए क्योंकि हम उनसे कितना प्यार करते हैं ये तो हमारा अगला गीत उनको खुद ही बता देगा।
2: हमें तुमसे प्यार कितना ये तो हम नहीं जानते।

0: हाँ तो सखियों, हमें आपसे बहुत सारा प्यार है, और इसीलिए क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप परिवार की धुरी हैं, तो आप पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकेंगी। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी जिसमें सेहत भी हो और साथ में हमारी जो दिनचर्या है उससे जुड़ी हुई बातें भी होंगी। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारी किचन की तरफ, जहाँ कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके साथ साथ आपके अपनों के लिए भी लंबी उम्र की सेहत को पक्का कर देंगे। तो बहुत सारी टिप्स हैं जो हम लेकर के आए हैं, तो उनमें से सबसे पहला जो है वो बसंत कुछ बताने वाली है।
1: बिल्कुल। सब्जियों और फलों को सिर्फ पानी से छूना नहीं, उन्हें अच्छे से धोना है। जब आप हर कीटाणु को दूर भगाती हैं, तो थाली में सिर्फ खाना नहीं, माँ और बहन का दुलार भी परोसा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि दुलार और प्यार ही तो है जो खाने के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। और जब बात होती है कि कच्ची सब्जियों और पके हुए खाने के लिए जो हम चॉपिंग बोर्ड्स का या चाकू वगैरह का, कटलरी का जो इस्तेमाल करते हैं ना, उनको अगर अलग अलग रख दिया जाए ना, तो एक छोटी सी जो हमारी आदत है, ये हमारे परिवार को अनजानी बीमारियों से कोसों दूर तक ले जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही खाना ना तो ज्यादा देर खुला छूटना चाहिए और ना ही बार बार गर्म होना चाहिए। सही तापमान पर पका और सही तरीके से स्टोर किया गया खाना ही असली पोषण देता है।
0: बिल्कुल। और एक बात जो हमारी जो है सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं, और उसके साथ में हम जो सखियां हैं ना, हमारी जो सखियां स्मार्ट हैं, वो भी इस बात का पूरे तरीके से ख्याल भी रखती हैं कि कम तेल में छिपा है गहरा प्यार, यानी मसालों का स्वाद उभर कर आना चाहिए। जो सब्जी हम बना रहे हैं वो बहुत स्वादिष्ट भी बननी चाहिए, लेकिन इसके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कढ़ाई में तेल जो है वो तैरता हुआ नजर आए। तो कम तेल और सही मसालों का संतुलन हमारे दिल को हमेशा जमा रखेगा और धड़कते रहने की ताकत भी देगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सजा रखी है जो थाली आपने, उसमें स्वाद के साथ फिक्र भी है, जायका ऐसा कमाल का आपकी रसोई का कि हर महफिल में आपका ही जिक्र भी होता है। तो हमारी जो प्यारी सखियां हैं, वो उनको हम इस खाद्य सुरक्षा दिवस में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं बसंत, लेकिन ये वादा करते हैं कि अपनी रसोई जो है उसको सिर्फ स्वाद का केंद्र नहीं बल्कि सुरक्षित सेहत का मंदिर भी हमें बनाना है। और बातें हमारी अब कुछ ज्यादा तो नहीं हो रही है, बातें बहुत सी है जो हम करने वाले हैं, लेकिन सखियों को सुनवाते हैं पहले एक और प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: सखियां सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। अभी अभी हमने बात की कि कैसे रसोई की स्वच्छता और सुरक्षा से हम घर और परिवार के दिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर इस रास्ते में थोड़े से रंग, थोड़ी खुशबू और थोड़ी शुद्धता की बहार और जुड़ जाए तो कैसा रहेगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा बसंत, क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं हमारे रसोई के उस छोटे से जादुई कोने की जिसे हम कहते हैं किचन गार्डन। तो वहाँ की बात कुछ अलग होती है। गमले में उगी वो हरी मिर्च जब तीखे तेवर दिखाती है और गमले की ताजी जो धनिया है जब दाल का जायका बढ़ाती है तो उसकी रौनक कुछ और होती है।
0: बाजार के पैकेटों में वो बात कहाँ मेरी सखियों जो माँ के हाथों से सींची हुई मिट्टी की सौंधी सी महक में होती है।
1: बिल्कुल, तो सच कहें तो सखियों किचन गार्डन सिर्फ पौधे लगाने की जगह ही नहीं बल्कि

0: हमारी रसोई का अपना एक छोटा सा लाइव सुपरमार्केट होता है, जहाँ ना कोई मिलावट है, ना कोई केमिकल और ना ही कोई पेस्टिसाइड्स, या वो जगह है जहाँ हम सेहत को खुद अपने हाथों से उगाते हैं।
1: बिल्कुल सखियो, आज के समय में हर कोई अच्छी सेहत चाहता है, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी होता है। बाजार में मिलने वाली सब्जियों और फलों में कई रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है,
0: बिल्कुल,
1: जो हमारी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम घर पर ही बिना केमिकल के जैविक सब्जियां और फल उगा सकते हैं, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए सबसे पहले ऐसी जगह चुनिए जहां पर कि दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे तक धूप आती हो। जगह बड़ी हो ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि सही धूप और देखभाल जरूरी है। अब बात करेंगे कि पौधों के भोजन की यानी कि खाद, तो उसे भी हम आसानी से बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर पे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमारी किचन में जो बहुत सी चीजें हैं, जो सब्जियों और फलों का जो कचरा होता है या छिलके होते हैं, उनसे हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। और कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आप घर की रसोई के कचरे का इस्तेमाल कर सकती हो, और जैसे चाय की पत्ती वगैरह होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस करना ये है कि एक या तो आपके जो कच्ची जगह है किचन के बाहर, जब गार्डन में अगर जो जगह है वहां पे आप एक बड़ा सा गड्ढा खोद दीजिए और उसमें वो डालते रहिए लगातार, और या फिर कोई इतनी जगह नहीं है तो आप कंटेनर ले सकते हैं, कोई डब्बा ले सकते हैं, और उसमें उस कचरे को इकट्ठा करती रहे और समय समय पर उसको उलट पुलट करती रहे। देखिए 40 से 60 दिन के अंदर आपकी कंपोस्ट खाद बनकर के तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सखियो, इससे कचरा भी कम होगा और आपके पौधों को प्राकृतिक पोषण भी मिलेगा। अब अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को जैसे कि टमाटर, मिर्ची, धनिया, पालक, मेथी, भिंडी, टिंडी, पता नहीं क्या क्या सब्जियां जो है वो आप अपने गमलों में और घर पर भी बेकार रखे। कई बार जो हमारी बाल्टियां टूट जाती हैं, टब टूट जाते हैं, तो हम उनका भी उपयोग करके और इसमें अपनी उसको उगा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ में प्राकृतिक कीट जो नियंत्रक जैसे कि नीम के तेल का घोल या फिर जैविक घोल का छिड़काव करके हम पौधों को स्वच्छ बना सकते हैं। और समय पर सिंचाई करने की तो जरूरत है ही, और जब आप सिंचाई करती है ना बसंत, यानी कि आप सुबह उठी और आप एक कप चाय की प्याली लेकर के जब बालकनी में जाती हैं और वहां आपका जो छोटा सा गमले में अगर पौधा लगा हुआ है उसको निहारते हुए चाय पीती है ना, तो आपके दिल का सुकून और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सुकून मिलता है।
1: बिल्कुल, थोड़ी सी देखभाल से ही आपके घर की बगिया ऑर्गेनिक सब्जियों से लहरा उठेगी और ये बगिया आपको हरियाली के साथ मानसिक शांति भी प्रदान करेगी।
0: बिल्कुल, मानसिक शांति भी प्रदान करेगी और सुकून भी देगी। साथ ही हमें एक सुकून तब भी मिलता है जब हमारी बगीचे में जब लहलाते फूल जो होते हैं वो हमसे बातें करते हैं और ये कहते हैं कि जो जीवन की बगिया है वो किस तरीके से महक रही है।

0: हाँ तो बसंत, जीवन की बगिया को महकाते महकाते हम फिर से चले चलते हैं हमारी किचन की तरफ, जहाँ हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि पौधे लगाएंगे, बगीचे को सजाएंगे, तो हम अपने किचन को भी सजा सकते हैं उन्हीं पौधों के साथ में। जैसे कि जो हर्ब्स हैं उनको हम लगा सकते हैं, और इसके साथ में हम एक फर्स्ट एड बॉक्स वाला गमला भी लगा सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: फर्स्ट एड बॉक्स वाला गमला ये है कि जिसमें हम एलोवेरा है, तुलसी है, अजवाइन का पौधा है, या फिर लेमन ग्रास को हम लगा सकते हैं। और जैसे कि अभी मैंने बात की थी ना कि सुबह बालकनी में जब हम चाय की चुस्की लेते हैं, तो उस चाय में अगर लेमन ग्रास डली हुई है तो हमारे तनाव को काफूर कर देती है। और इसके साथ ही जब हम जो कबाड़ से जुगाड़ वाली बात करते हैं ना, तो हमारे घर में बहुत सी टूटी फूटी या ऐसी चीजें हैं जिनको हम फेंक, वो हमारे लिए यूज में नहीं आ रही है, पुरानी जो ट्रे है या पुरानी जो हमारे बकेट्स हैं उनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको बहुत सुंदर डेकोरेट करके भी हम अपने किचन में वॉल हैंगिंग की तरह या हमारी जो किचन की खिड़की है वहाँ पे लगा सकते हैं, और इस तरह से हमारा किचन भी हरा भरा और महकता हुआ नजर आएगा।
1: बिल्कुल समीला, नन्हे से पौधे में जब हम पानी डालते हैं और उसमें से जब एक नई पत्ती फूटती है तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं बढ़ता, उसके साथ हमारा सुकून बढ़ता है।
0: बिल्कुल
1: है ना। और जब बच्चे देखते हैं कि टमाटर कैसे बड़ा हो रहा है तो वो प्रकृति की इज्जत करना सीखते हैं, यानी स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत, और बच्चों को एक खूबसूरत सीख भी मिलती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाथों में मिट्टी की खुशबू और होठों पर हो मुस्कान, हर नारी का अपना एक छोटा सा हो हरा भरा आसमान।
0: बिल्कुल।
1: तो सखियों क्यों ना आज से ही आप भी अपने घर में एक छोटी सी जैविक बगिया उगाने की शुरुआत कीजिए। और अभी हम सुनते हैं प्यारा सा गीत।
2: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
3: कैन
2: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है?
3: है।
2: गलियों की निहार है?
3: है।
2: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है, आज सोमवार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
2: प्यार तो हमें है अपनी सखियों से, इसीलिए हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और चलो आज हमने जब किचन गार्डन तक की बात कर ली, और आज ये सारी बातें इसलिए कि हम अपनी सेहत और सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहती हैं, और ये हमारा दायित्व भी है कि हम इस तरह से अगर चिंता करते हैं तो हमारे परिवार की सेहत बनी रहे, और उसके लिए हम बहुत से प्रयास भी करते हैं, और उसके लिए हम निरंतर प्रयास के साथ में कुछ ऐसी बातें भी होती है जिनको हम जोड़ करके और अपने किचन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं और साथ ही अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। तो किचन गार्डन से हमने ताजगी भी बटोर ली, लेकिन सोचिए इतनी शिद्दत से और प्यार से लाई गई अगर चीजें रसोई में रखे रखे खराब हो जाए या उसमें कीड़े लग जाए या फंगस आ जाए तो मेरा तो बहुत दिल दुखता है।
3: मेरा भी दुखता है यार।
2: कहते हैं कि एक समझदार जो गृहिणी होती है वो सिर्फ अच्छा खाना बनाना नहीं जानती बल्कि वह रसोई के सामान की उम्र बढ़ाना भी जानती है, और चीजें सहज कर रखना भी एक कला है, सिर्फ लाना ही नहीं उन्हें बचाना भी एक कला है।
3: बिल्कुल, जहां चीजें सलीके और सलीके से और महफूज रखी जाती है समझो उस घर में बरकत नजर आती है।
2: बिल्कुल,
3: तो सिर्फ खाना बनाना ही काफी नहीं होता है बल्कि उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता का आधार भी है। यदि भोजन को सही ढंग से न रखा जाए तो उसमें बैक्टीरिया, फफूंद और कीटाणु पनप सकते हैं जो अनेक बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि खाना दिखने में ठीक है तो खाने योग्य भी होगा, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है कि हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो बिना गंध और स्वाद बदले भी भोजन में मौजूद रह सकते हैं, तो इसलिए भोजन व अनाज को सही तरीके से स्टोर करना भी बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कह रही है, और देखो ना अभी जो मौसम है वो मौसम बदल रहा है और तेज गर्मी है, इसमें इस तरह हम जो खाना रखते हैं उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। तो जहां हम बात करते हैं अनाज और दालों की, तो अनाज को जो है नीम की जो सूखी पत्तियां होती है ना उसके साथ में रखने से नीम की सूखी पत्तियों की एक लेयर रखकर फिर अनाज को अगर स्टोर किया जाता है तो उसमें कीड़े नहीं लगते। इसके साथ ही साथ अनाज को पूरी तरह से सुखा करके और फिर उसको स्टोर करना चाहिए, और समय समय पर यह चेक करते रहना चाहिए।

0: है कि अनाज खराब तो नहीं हो रहा, और इसके साथ ही गर्मी और उमस में जो है दालें या चावल या सूजी, इनमें घुन या कीड़े लगने का भी आम बात हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो इनसे बचने के लिए अनाज के डिब्बों में जो है सूखी पत्तियां तो डाल ही रहे हैं, उसके साथ ही बहुत सी जो है ऐसी दवाइयाँ या ऐसी चीज़ें भी हमारे पास में मौजूद हैं जिनको हमें उसमें रख देना चाहिए। लेकिन दवाइयाँ जब आप रख रहे हो तो उसमें
1: हाँ
0: आप ये याद रखिए कि उसको कॉटन के कपड़े में लपेट
1: हाँ
0: करके
1: हाँ
0: बांध
1: बिल्कुल
0: करके रखें, ताकि जब हम उस अनाज को ले रहे हैं तो उसके साथ में वो ना आ जाए, और उसको अच्छे से चेक करके बाहर निकाल दें, उसके बाद में ही खाने पीने की वस्तुओं का इस्तेमाल करना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: समीना, इसके साथ ही अगर जैसे सूजी है या दलिया है, ये चीज़ें होती है ना, तो इनमें कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते
0: हाँ
1: हैं, तो
0: हाँ
1: इनको अगर ड्राई रोस्ट करके और अगर हम ठंडा करके कंटेनर में रखेंगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जो मसाले हैं उनकी खुशबू जो है वो या रंग जो है वो बदल जाता है हवा में लगते ही, तो हमेशा उनको कांच के एयरटाइट जार में रखें, और कभी भी गीले चम्मच से मसाला ना निकालें, क्योंकि नमी से ही जो है वो फंगस बहुत ज़्यादा फैलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें हम सब्जी और फलों की, तो उनको खरीदने के बाद साफ धोकर सुखाना, फिर फ्रिज में रखना चाहिए। और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन्हें सूती कपड़े में लपेटकर या पेपर में लपेटकर फ्रिज में रखना चाहिए। और साथ ही जो पका हुआ भोजन है उसको 2 घंटे से अधिक कमरे के तापमान पर नहीं रखना चाहिए, उसे ठंडा करके ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख देना चाहिए, और दोबारा खाने से पहले उसे अच्छी तरह से गर्म करके रखना चाहिए ताकि बैक्टीरिया उसके नष्ट हो जाएं।
0: और एक बात और है, जब हम ईंधन के बचाने की बात करते हैं तो खाने को बार बार गर्म भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छे जो पौष्टिक तत्व हैं, खाना अगर बार बार गर्म होता है तो अच्छे जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी निकल जाते हैं। तो सुरक्षित भोजन को रखना ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। उसके साथ हमारी दूसरी, या ये कह दूं कि पहली ही जिम्मेदारी एक और भी है, वो ये है कि हम जो भंडारण कर रहे हैं उसके साथ में हम जो खाना बना रहे हैं ना, वो इतना ही बनाएं कि वो हमारा परिवार उस समय में खा ले,
1: बिल्कुल,
0: बचे नहीं, बर्बाद ना हो।
1: बर्बादी नहीं हो ना, खाने की बर्बादी नहीं हो, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी इससे रक्षा हो। और कहते हैं ना, ये बचत करना या लिमिट खाना बनाना, जितनी जरूरत है उतना बनाना, तो ये एक अच्छी आदत है जो हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ में हमारी दादी नानी के नुस्खों की अगर बात करें ना, तो
1: हाँ
0: हम तेल और नमक के फॉर्मूले को तो भूल ही नहीं सकते तो
1: बिल्कुल
0: ये लंबे समय तक चीजों को प्रिजर्व करने का, जैसे कि हम लोग अचार जो डालते हैं ना बसंत, अचार में तेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये सभी जानती हैं।
1: बिल्कुल
0: जब तक
1: बिल्कुल
0: अचार तेल में डूबा हुआ रहेगा तब
1: खराब
0: तक
1: नहीं
0: वो
1: होता।
0: खराब नहीं होगा। इसी तरह से सिरका है, नमक है, ये हमारे किचन के बिल्कुल मजबूत सिपाही बन करके खड़े होते हैं। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट आप बना रही हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए, देखिए आपका जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो कभी भी खराब नहीं होगा। इसी तरह से जो भी चीजें आप ला रहे हो, मिर्च जैसे आपने कहा कि हरी सब्जियां हैं उनको भी फ्रिज में रखने से पहले उनको अच्छी तरह से धो
1: धो
0: करके
1: के
0: सुखाना
1: सुखा
0: है,
1: के और
0: तो
1: फिर,
0: उसके डंठल भी तोड़ देना तब भी वो
1: हाँ
0: खराब
1: सही
0: नहीं
1: है, मिर्ची के लिए तो ये
0: होंगे
1: बहुत जरूरी है ना। तो जहां स्वच्छता और सावधानी का हो सम्मान, वहीं बसता है खुशहाल और निरोगी जहान। तो अभी
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और

0: लालून आसानी से पाओ
1: कार, नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: RBI कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: सखियो, रसोई में जब मसालों की महक बिखर जाती है तो सादा सी रोटी भी दावत नजर आती है। जिंदगी में जैसे रिश्तों की मिठास जरूरी है, वैसे ही हमारे भोजन में शुद्ध मसालों की जो है महक बहुत जरूरी है। सखियो, मसाले हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन यदि इनमें मिलावट हो तो सही मसाले भी सेहत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम स्वाद के साथ साथ इनकी शुद्धता पर भी ध्यान दें।
5: बिल्कुल बसंत, भोजन तभी पौष्टिक बनता है जब उसमें इस्तेमाल होने वाली जो सामग्री है ना वो गुणवत्तापूर्ण हो और सुरक्षित हो। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि भाई मसाले जो हम खरीद रहे हैं वो सही हैं या नहीं, उनमें कोई मिलावट है या नहीं? तो इसकी पहचान हम घरेलू स्तर पे भी कर सकते हैं। वैसे तो हमें देखने से पता नहीं चलता, लेकिन हम घर पर ला करके या उसका सैंपल टेस्ट करके हम वहीं पे पता लगा सकते हैं। जैसे आप हल्दी को ही ले लीजिए, हमें हल्दी की शुद्धता की पहचान करनी है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो एक कांच के ट्रांसपेरेंट ग्लास को लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए और उसमें हल्दी पाउडर को डालिए और मिलाइए। अगर उसका रंग तुरंत से पीला हो जाएगा, यानी उसमें जो है केमिकल या रंग मिलाया गया है, और धीरे धीरे अगर उस वो हल्दी अपनी पिलास अगर छोड़ रही है तो वो शुद्ध हल्दी है।
4: ऐसे ही बात करें लाल मिर्च पाउडर की, तो पानी में डालने पर यदि रंग उसका तुरंत फैलने लग जाए तो समझो उसमें कृत्रिम रंग मिला हुआ है। ऐसे ही धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर जो ओरिजिनल होता है उस वो हल्का भूरा होता है, हल्का हरा और भूरा होता है, और अगर पानी में डालेंगे तो वो धनिया धीरे धीरे करके तली में बैठ जाएगा नीचे, है ना। यदि अगर वो पानी पर तैरता रहे और मतलब उसका कलर गहरा हरा हो तो समझो कि उसमें मिलावट है।
5: बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम बात करें जीरे की, तो जीरा जो है आयरन का अच्छा स्रोत है, पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, और जीरे में मिलावट की अगर पहचान करनी है तो उसे अपनी हथेली पर लीजिए और उसको रगड़िए, उसमें से एकदम से जो है विशिष्ट खुशबू आने लगेगी, तो वो शुद्ध जीरा है, उसकी पहचान हो जाएगी। इसी तरह से हम अजवाइन की भी पहचान कर सकते हैं, और राय की पहचान करने के लिए भी हम ये देखें कि उसको ग्लास में पानी में डालेंगे और अगर तुरंत तली में नीचे की तरफ बैठ जाती है तो वो जो है वो राई जो है वो शुद्ध जो होगी वो बिल्कुल नीचे तली में बैठ जाएगी और जिसमें मिलावट होगी वो नहीं बैठेगी।
4: सही है। अब काली मिर्च में अक्सर क्या करते हैं लोग, पपीते के बीजों को मिला लेते हैं, तो काली मिर्च की पहचान करने के लिए भी यही है कि आप उसको पानी में डालिए, अगर वो तली में बैठ जाती है तो शुद्ध है, और अगर ऊपर तैरती है तो समझो उसमें
5: बिल्कुल बिल्कुल
4: मिलावट है उसमें।
5: तो इस तरह से मसाले और जड़ी बूटियां जो है वो हमारी भोजन को स्वादिष्ट तो बनाते ही हैं, साथ साथ स्वास्थ्य का लाभ भी ये हमें प्रदान करते हैं। तो हमें हमेशा शुद्ध मसालों और जो जो भी चीजें हम किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये देख करके लेना है कि वो शुद्ध है या नहीं, और उसकी पहचान हम अपने स्तर पे भी कर सकते हैं,
4: अपने स्तर से उनको देख कर फिर ही हमें उन मसालों को
5: खरीदना चाहिए
4: और उपयोग में लाना चाहिए।
5: बिल्कुल।

0: सखियों, आज हमने रसोई की सफाई से लेकर किचन गार्डन, मसालों की जांच और सस्टेनेबल कुकिंग का सारा सफर तय किया है, लेकिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हमारी ये चर्चा तब तक अधूरी है जब तक कि हम एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों और कर्तव्यों को ना पहचान लें।
1: बिल्कुल, हम अक्सर मिलावट का रोना रोते हैं, दुकानदारों को कोसते हैं, लेकिन खुद चुप हो जाते हैं। याद रखिए, अगर हमारी चुप्पी ही हमारी मिलावट करने वाली हमारे जो सामानों में जो मिलावट करने वालों का सबसे बड़ा हौसला होती है।
0: बिल्कुल, चुप रहने से कोई बदलाव नहीं आता दोस्तों। हक के लिए अपने अब आवाज उठानी होगी। जो खेल रहे हैं चंद रुपयों के लिए हमारे अपनों की जान से, उनकी हर एक साजिश अब हमें नाकाम बनानी होगी।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पे हम अपने इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हम लोग विशेष रूप से ख्याल रखें तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, मिलावटी चीज़ों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा बिल मांगना हमारा सबसे पहला हक है।
0: बिल्कुल,
1: यानी जब भी आप राशन, दूध या मसाले खरीदें, दुकानदार से पक्का बिल जरूर लें। और ये बिल जो है वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल ये मिलावट पर पाए जाने, अगर किसी चीज़ में, आपके द्वारा खरीदी गई चीज़ में अगर कोई मिलावट है तो आपके पास ये पक्का सबूत रहेगा कि आपने उस दुकानदार से ये चीज खरीदी थी।
0: बिल्कुल। इसके साथ ही पैकेट बंद सामान खरीदते समय उस पर FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का लोगो और लाइसेंस नंबर भी जरूर चेक करना चाहिए। अगर सामान पर ये नहीं है तो समझ लीजिए कि वह आपकी सेहत के लिए सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से फूड सेफ्टी कनेक्ट पर आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। किसी दुकान या प्रोडक्ट में, दुकान से मिले सामान में या प्रोडक्ट में मिलावट का शक है तो डरिए मत। सरकार ने मिलावट के खिलाफ फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल और टोल फ्री नंबर जारी किए हैं जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और आपकी जो शिकायत है वो गुप्त रहेगी और पूरे शहर को जहर खाने से बचा सकती है।
0: बिल्कुल, तो मेरी प्यारी सखियों, आज इस खाद्य सुरक्षा दिवस पर चलिए हम सब मिलकर एक फौजी की तरह अपनी रसोई और अपने समाज की सुरक्षा की शपथ लेते हैं। हम खुद भी जागरूक बनेंगे और दूसरों को भी जगाएंगे।
1: बिल्कुल, दुकानदार की चालाकी को अब हमें पहचानना होगा और सेहत की असली दौलत है इसके बारे में हम सारे नागरिकों को मानना पड़ेगा। तो आज की हमारी मुलाकात अब यहीं पे खत्म होती है और इसके साथ ही हम चलते चलते आपको नारी वाटिका की टीम से रूबरू कराते हैं। HPT ट्रांसमिशन से हमारे सहयोगी रहे विक्रम सिंह भाटी और प्रेम किशोर सेन,
0: कंट्रोल रूम से हमारा सहयोग किया दिलीप सिंह परमार ने,
1: और कंसोल से आपको खूबसूरत नगमे सुनवाए नवनीत अहलावत ने। अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी समीना
0: और बसंत कंवर को।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। अब समय है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का। प्रस्तुत है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस

0: वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के दो हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के चार

0: ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुख तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6ठे ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3

0: दिनों में देशभर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के उपरांत एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की शुरुआत में आप सुन रहे हैं फिल्म कोयला, फिल्म से ये गाना, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाजें, इंदीवर के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इस

अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।

0: Very important pillar of any GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
3: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल उद्यानवी ने लिखा है और संगीत बद किया है रवि ने.

0: अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिल लुधियानवी के बोल है संगीतकार रवि फिल्म का नाम।
1: पता है न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सबसे हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक हो तुमको।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: रामकुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और यह अगला गीत दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में जीएल रावल ने इस गीत को लिखा, सोनिक ओमी का संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बद किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में हम करते हैं शामिल आपके उन पत्रों को जिनमें आप लिख भेजते हैं हमें आपकी मन चाहे गीत। लीजिए हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

लीजिए, अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मला वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण। इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत। गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू। लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। समीर के बोल, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर इन्फेक्शन ऐसे

0: ओबेसिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
3: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को फिर दुख को अपना

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्ल्यू अंसारी और बीबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल उमेश सरोज, आरती रेखा रितिका, रिचा स्वीटी सागर, रिया रीत ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का, और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने, और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इद्रिसी, नईम इद्रिसी और नदीम इद्रिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: दूसरा और अंतिम भाग, लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खान। वालिये का नाम राजा साहब से अभी मिलना है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खान आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाब अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए कैसे आना हुआ, कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊँ चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: तेरे की हार हो गई, जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना आयुब?
2: जी आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को नाउम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लक्ष्मण, अजरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
4: जी बिल्कुल।
5: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
5: हजूर ने मैंने याद किता ही है।
3: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
5: सौंपो जी सौंपो।
3: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
5: साड़ी मदद?
3: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
5: जो हुक्म हुजूर, जो हुक्म, मैं उन्हीं जान की तैयारी करता हूँ।
3: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
2: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के माने ही रखूंगा।
3: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
2: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
3: और जाओ गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
6: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
7: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम खादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
6: क्यों, क्या हुआ?
7: अभी बताती हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
6: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
7: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्जी को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन जनाब ने उसे माफ।
6: उफ दादी जान,
7: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह दखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
6: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
7: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
6: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
7: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में न आए।
6: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
7: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
6: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
7: उफ़।

उफ, कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि टिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीरुल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहंशाह को मजबूर कर दिया। तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा। क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। कोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

वाह, तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक तो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेहयाबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह। अब किसी को भी मैं बच्चों के खरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी।

0: गुज़श्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलम पनाह, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर हो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पनाह के हुक्म के दे रहे, अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
0: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से तगा होगी, हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ तगा। तवारीख के सफ़े लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
2: जनाब ने कैसे याद किया?
0: कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बाला इताक रख दी।
2: जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से साफ का पड़ा ही कहां है, गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
0: क्या कहा?
2: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में इत्तेहाद रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो, इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
0: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
2: नहीं, लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार बख्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो।

0: मंजूर के बच्चे नालायक लासत माल कहां छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की है।
0: रखता देता है कि छुरा पार कर दूं?
1: अभी सब देता हूं हुजूर, अभी सब देता हूं।
0: ला निकल।

0: दिल्ली के इस भरे दरबार में ना जी।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है, ये बला कैसे आने लगी।

0: दीसाजी, इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले,
1: श्रीमंत,
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत, यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंसूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे, फिर ग्वालियर चले गए। वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती? जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: जहां बना तले की ये दुर्दशा, बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां बना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने, हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीह, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शे, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।
1: खुदा हाफिज।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना, सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत में भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ओह, ये उस कमी

0: Jinak. यूं क्या? वाह, ये शायद उसके होंठ हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त। नहीं,
1: ये है सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
2: हुजूर,
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
2: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जानें बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।

0: हमें इल्म हो चुका है लाला जी। बोलो क्या इनाम चाहते हो?
1: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और एक घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके।

के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधोजी सिंधिया भी शामिल है।

लाला शीतलदास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लगा रहा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा।
0: जिनके गीतों में धार्मिक

0: कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने उस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था आपके घर का, क्या माहौल था? और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
3: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं, रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते हैं यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो

0: मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ. और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना. अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
1: जी.
0: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में.
1: जी.
0: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए. मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल.
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के. महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं. इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ. उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है.
1: ठीक है.
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है.
1: जी.
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस. तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी. ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा. ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए. तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है. ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा. ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर. तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है.
1: जी.
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे. ठीक है, अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे. तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी.
1: अच्छा.
0: ये तो ओपन सीक्रेट है. तो फिर ठीक है, आशा दीदी गाएगी. फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में. अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे. लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया. तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुई. ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में.
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे, एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी.
1: अच्छा.
0: एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना. लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में. और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया. प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन.
1: अच्छा.
0: हाँ. तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना.
1: जी.
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए. गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए.
1: जी.
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए. लोग एकदम सुनना शुरू किया कि ये क्या है. जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है. और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे. और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो.
1: था.
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको, क्योंकि उनके मन में भी ग्लानी बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए हमारे जवान,

0: हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी, तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानी थी
1: जी,
0: गिल्ट फीलिंग
1: जी।
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया लेकिन कवि कहाँ है,
1: अच्छा
0: ये लिखा किसने है
1: जी।
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत
0: जी।
1: जी
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में,
1: अच्छा
0: बोलते हम सब तो थे लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूं कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी
1: जी जी,
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा और उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा, पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए और नेचुरली भूल गए लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए
1: जी,
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों आपने लिखा है, अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं
1: जी,
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रहे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी,
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली
1: जी, जी जी।
0: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है
1: कि जो होता है
0: अच्छा
1: के
0: होता,
1: लिए
0: है।
1: होता है जी।
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा,
0: इसी गीत को
1: सुनाए।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी,
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
1: जी।
0: मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: जी,
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देशप्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी,
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी,
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे। आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास।
0: हाँ हाँ।
1: और कभी कभी ऐसा होता था, अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे हम लोग खड़े। तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
0: जी,
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे। हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
0: जी
1: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए।
0: जी जी।
1: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
0: जी,
1: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
0: बिल्कुल।
1: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
0: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
1: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो चार पांच अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी।

0: चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार
1: जी,
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं के
0: हमारे वहाँ अखबार आते थे
1: और उसे पढ़ा जाता
0: और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए
1: जी।
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती। बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 5:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था।
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: एक नहीं, 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा,
0: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में,
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था।
0: हाँ,
1: और
0: हाँ।
1: हर कण कण
0: तो
1: में वो
0: ये जो जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों।
1: वाह, क्या बात है, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है ये, और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को, गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
2: सबसे दुनिया में रहते हुए भी
1: उस
2: माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
2: और किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए।
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहरी ने
2: जी।
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूं, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
2: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो।
1: हाँ, हम
2: अभी जो फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था।
1: हाँ,
2: कविताओं का।
1: हाँ हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ।
2: जी,
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा

0: था कि आजाद जब नहीं रहे चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी. उसी दौरान उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
1: जी,
0: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले गए. लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए. कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही. निखिल प्रकृति लहलही, विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही. मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी. और आप अगर सुने एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा.
1: यही पैगाम
0: वो ही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए. तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से भाईचारा.
1: ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते, भुला नहीं सकते, झुठला नहीं सकते हैं. तो आप कहें तो यही गीत हम सुन लें.
0: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है.
1: आइए सुनते हैं ये गीत.

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई, मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी।

0: वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंदेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारी पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
1: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
0: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
1: जागृति
0: मिली हमको,
1: जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
0: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
1: जी जी।
0: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
1: अच्छा।
0: जब मिल गई आजादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
1: बहुत बड़ा सवाल।
0: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
1: इस देश को रखना
0: मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से? और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
0: हर एक लाइन सुनिए आप
1: जी।

0: काल के।
1: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही है और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
2: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा। क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाक्या हुआ था
1: जी,
2: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलते मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने

रिहर्सल्स, ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ. और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला. ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ. संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए. तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपी नैयर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ.

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी
0: कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम एफएम सेंसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी हमारे प्राइमरी चैनल से।

0: ठीक शाम 5 बज चुकी है और लेकर आ चुके हैं हम आप ही का कार्यक्रम व्यू वाणी। जी हाँ, और ये जो प्यारी सी शाम है और ये मौसम की जो अटखेलियाँ चल रही है कुछ दिन से, ऐसा लग रहा है कभी ठंडी हवा आ रही है, कभी एकदम गर्मी हो रही है। भाई साहब, इसका ना मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज है संडे, हम में से हर इंसान का सबसे ज़्यादा फेवरेट दिन, क्योंकि इस दिन लगता है कि यार चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा। पर जैसे जैसे शाम पास आती है, लगता रहता है अरे अभी तो आया था, अरे संडे फिर से चला गया। कोई नहीं, अभी तो शाम आई है, इसको और रंगीन बनाएंगे, अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। और आज का टॉपिक भी ऐसा है जो तो हम बोल सकते हैं कि आज चाय पे चर्चा होने वाली है, इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। हाल फिलहाल आपके साथ जुड़ी है दो प्यारी आवाजें, मेरा नाम है रिद्धि।
1: जी हाँ, मैं हूँ लोगों आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त नितेश। और बिल्कुल रिद्धि, इतवार का दिन है और इस दिन लोग है ना वो ढेर सारी बातें करते हैं कि भाई यार वीकेंड पे जो भी जो अधूरे काम थे उस सबको पूरा करना है, पूरा करना है। जो लिस्ट है वो लंबी होती जाती है होती जाती है, और इतवार आते आते ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो रह गया है। और वो रह गया किस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस होता है, वो होती है भाई शाम की चाय पे ज़्यादा यही चीज़ें डिस्कस होती है। चलो इस बार जो काम नहीं हुआ वो नेक्स्ट वीकेंड पे लेके चलते हैं।
0: और संडे होता भी ऐसा दोस्तों, बस हमें खुश करने के लिए आता है। मुझे ऐसा लगता है जिसने भी संडे बनाया उसे एक और संडे बनाना चाहिए था, संडे 1 और संडे 2, ताकि लोग एक संडे पे अपना काम करें और दूसरे संडे को थोड़ा तो एंजॉय करें। भाई अब तो देखते, सैटरडे को भी ऑफिस में छुट्टी नहीं होती, पर कोई नहीं, यही वैल्यू सिखाता है कि जो कुछ मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, उसकी वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से ट्रैक के साथ, और किस बात पे आज हम बातें करने वाले हैं आपसे वो आपको बताएंगे और नंबर भी बताएंगे। हाल फिलहाल एंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक।
2: तू

0: सेल्फी लेंगे?
1: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी जो संडे स्पेशल आप इंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन FM 102.1 मीडियम वेव 531 रिद्धि और नितेश के साथ। और रिद्धि, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ रिश्ते दिल के करीब इतने होते हैं और कुछ तो कप के करीब होते। किसी की सुबह है ना जो चाय के बिना अधूरी है, तो किसी की रात कॉफी के बिना अधूरी है।
3: ये तो होता है नितेश, और जहां तक हम जानते हैं कि अभी जैसे शाम का वक्त हो रहा है तो बहुत से लोग जो हमें सुन रहे होंगे उनके हाथ में पक्का चाय के एक कप जरूर होगा या कॉफी होगी, या फिर अभी ऐसा मूड बन रहा होगा कि हाँ रसोई में कोई तो जाए और चाय बना के लाए। तो हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में चाय की भूमिका है वो बहुत बड़ी है। मतलब ये सोच के भी लगता है कि पहली बार जहां पर चाय बनी होगी, पहली बार चाय की खुशबू कहीं उठी होगी तो वो कैसा लगा होगा। तो आज भी हम देखते हैं कि घरों में जब चाय बनती है उसमें अगर थोड़ा सा भी अदरक कम रह जाए, इलायची ना डले, तो जो रोज चाय पीते ना उनको लगता रहे यार कि आज तो कुछ तो चाय में रह गया है। तो ये तो भाई कंफर्म है कि चाय की जो वैल्यू है हमारे भारत में वो बहुत ज्यादा है। और हमारे शहर जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे तो हर बात पर चाय आ जाती है। कुछ अच्छा हुआ तो चाय ले आओ, कुछ खराब हो रहा है तो चाय ले आओ, कोई टेंशन है तो चाय ले आओ, या फिर कोई डिसीजन लेना है तब भी चाय ले आओ। और अगर हम देखें तो आज की जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो कॉफी का भी कॉम्पिटिशन है वो बहुत भारी हो गया है। यंगस्टर्स जो है वो कॉफी की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं, पर जो चाय लवर्स है उनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो जी हाँ श्रोताओं, आज जो हमारे बात करने का टॉपिक है वो चाय है, और हम आज चाय पे चर्चा करने वाले हैं कि चाय की भूमिका आपके जीवन में क्या है, कितनी वैल्यू रखती है, और अगर चाय नहीं होती तो आपका लाइफ कैसा होता। और ये जो कॉम्पिटिशन है चाय कॉफी

मैम, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ बेटर है, ये आप हमें ज़रूर से बता सकते हैं। हमारा नंबर है 0291-255-3300, दूसरा नंबर है 255-4300, और हिंदी में बताएं तो हमारा नंबर है 2553-300 और दूसरा नंबर है 2554-300। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, हमें कॉल लगाइए और अपनी चाय को इंजॉय करते करते हमसे भी बातें कीजिए। तब तक आप इंजॉय कीजिए ये प्यारे से गाने।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारे आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी सर, नमस्ते।
1: नमस्कार, मैं किरामुद्दीन बोल रहा था।
0: जी जी, आपने आज का विषय सुना होगा सर।
1: जी जी, चाय के लिए सुना है।
0: बताइए
1: मैडम। मम्मी के हाथ की जब चाय सुबह सुबह बिस्तरों में मिलती थी ना, वो वक्त मुझे अभी भी याद आता है। अभी मिसेज के हाथ की पीनी पड़ती है, पहले मम्मी के हाथ पीते थे।
0: हाँ।
1: ये याद आ गया तो मैंने कहा कि आपने जो पॉइंट पकड़ा है ना, वो बहुत अच्छा पकड़ा है कि ये वक्त जो है वो चाय का ही है।
0: हाँ।
1: अभी काम पे भी जाते हैं ना तो चीर कर तक जाके चाय पीने पड़ती है मैडम।
0: हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट
1: चाय। जी
0: इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है हमारे जीवन का चाय।
1: जी जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट हिस्सा ही है मैडम। नींद में से उठेंगे, चाय नहीं मिली तो समझ लो सुबह नहीं हुई अभी तक।
0: हाँ, जोधपुर में तो जोधपुर में दो चीजें चलती है, किला दिखना चाहिए और एक चाय मिलनी चाहिए।
1: जी जी
0: जी सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू।

0: तो दोस्तों आज जो ये विषय है चाय का, तो ऐसा लगता है कि ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि सभी लोग इस पर अपनी अपनी राय देना चाहते हैं. और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर आ चुके हैं. हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार,
0: नमस्ते सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं अब्दुल हकीम बोल रहा हूँ चैनपुरा फलोदी से।
0: अब्दुल जी, तो आपने जैसा आज का विषय सुना होगा, चाय का जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में.
1: हाँ जी, चाय का मामला ऐसा है कि हर चीज मिल जाए, कुछ
0: जी
1: भी है उसके उसके बगैर रह सकते हैं, लेकिन चाय के बगैर नहीं रह सकते।
0: ये तो
1: जैसे कि
0: है.
1: हमारे यहाँ मेहमान आते हैं ना, तो फिर उसको पहले चाय की मेहमानी की जाती है,
0: जी
1: और अगर जो चाय की मेहमानी ना करें और खाना खिला दें, घी में रोटियां चूर करके खिला दें, हलवा खिला दें, कुछ भी खिला दें, और चाय की मनोहार नहीं करेंगे ना, तो फिर बाद में वहां बाहर निकलने के बाद क्या कहेंगे कि चाय पानी कुछ नहीं है।
0: खाना खाना खा लिया फिर भी चाय पानी नहीं हुई.
1: हाँ, चाय पानी नहीं पिलाया और चाय नहीं पिलाया और खाना खिला दिया खूब तरह से, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चाय पानी कुछ नहीं है।
0: ये
1: और
0: तो
1: खाना
0: है
1: पानी
0: सर.
1: पिला दो और चाय पिला दो और कुछ भी मत खिलाओ, कि वहां पे ठाट है, चाय पानी खूब है, ऐसा मामला है चाय का हमारे यहाँ भारत में।
0: यहाँ पर भी सर ऐसा ही है. जो चाय का वैल्यू है सोसाइटी में बहुत ज्यादा है,
1: हाँ जी
0: उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है. तो सर आपने हमें कॉल किया और हमसे कनेक्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया.

0: श्वेता, मेरे को लग रहा है ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो लाइंस हैं हमारे कॉल की वो बढ़ती जा रही है. हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ आ चुके हैं. हेलो
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम पुखराज है मैडम।
0: पुखराज जी, तो आज चाय पे बात हो रही है,
1: हाँ मैडम।
0: बताइए सर आपको कैसी लगती है चाय?

0: ये बहुत लोग ग्रीन टी पीते हैं,
1: हाँ
0: बहुत
1: वो
0: लोग
1: ग्रीन
0: ब्लैक
1: टी
0: टी
1: है,
0: पीते
1: लेमन
0: हैं।
1: टी है, नींबू टी है, वो इस तरह से चाय की अलग अलग वैरायटी आ गई है।
0: पर ओरिजिनल चाय की
1: चाय
0: बात
1: पीते
0: अलग
1: हैं
0: है,
1: लोग।
0: ऐसा
1: हाँ मैडम,
0: एकदम जो शुद्ध चाय होती है, दूध वाली चाय, उसका अलग मजा है।
1: हाँ वो तो गांव वाली, पहले वाली
0: गांव वाली
1: नींबू
0: चाय।
1: से।
0: जी सर, हमसे
1: ओके
0: जुड़ने
1: ओके,
0: के लिए
1: आपका
0: आपका
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: स्वागत है।
0: शुक्रिया।
1: हेलो,
0: तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं चाय कॉफी पे। और जो लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी का भी जो एक खुमार है वो बहुत अलग होता है। कॉफी पीते पीते कब उसकी आदत लग जाती है, कब वो भी चाय की जितनी प्यारी हो जाती है, हमें इसका पता नहीं पड़ता। तो जो लोग कॉफी का भी फेवर रखते हैं, वो भी जरूर हमें कॉल करके बता सकते हैं, क्योंकि आज जो कॉम्पिटिशन है वो चाय और कॉफी दोनों का है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो आप भी अपने फोन उठाइए और अपना व्यू बताइए कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, और की वेराइटीज के बारे में भी बात कर सकते हैं कि जो ग्रीन टी है, अगर हम उसको देखें तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। अगर हम रोज कंज्यूम करें तो उसकी आपको आदत भी हो जाए तो आपके शरीर को बहुत फायदा करती है। हम भी इस विषय पे और बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं हमारे गाने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान
0: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: तो दोस्तों आज जहाँ पर चाय की बात हो रही है तो अभी मैं और नितेश बात कर रहे थे तो ये बात रियलाइज हुई कि आज के ज़माने में हम देखते हैं कि इतने तरह के ब्रेकफास्ट आ गए हैं जो दिन के शुरुआत करने के तरीके हैं वो बहुत सारी वैरायटीज आ गई है बहुत हेल्दी ऑप्शंस आ गए बहुत फैंसी ऑप्शंस भी आ गए पर जब हम छोटे थे तब ऐसा लगता था कि स्कूल कॉलेज जाना है तब ये होता था कि जो सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है वो होता है चाय टोस्ट उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता था और आज भी अगर कोई चाय टोस्ट ला के देते चाय बिस्किट ला के देते तो ऐसा लगता है कि यार इससे ज़्यादा कंफर्टिंग फूड क्या हो सकता है मतलब उसको कंज्यूम करती ऐसा लगता है कि बस अब शांति मिली है और दूसरी चीज़ ये है कि चाय के जो बेनिफिट्स है अगर हम देखें अदरक तुलसी की चाय हो गई उसमें काली मिर्च डली हुई है तो वो अपनी हेल्थ को भी फायदा करती है कभी जुखाम है बुखार है तो उसमें आप चाय कंज्यूम कर लीजिए आपको बहुत अच्छा फील होता है फिर मेरे को ये चीज़ भी पता पड़ी कि अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ है और अगर आप चाय और घी का कॉम्बिनेशन पीते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है सुनने में बड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है चाय और घी पर अगर आपने कंज्यूम किया है और अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप जानते होंगे कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये रेगुलरली नहीं पी सकते पर हाँ एज अ मेडिसिन आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपके पेट में कोई भी दिक्कत है तो वो ठीक हो जाती है तो भाई चाय तो एक मैजिकल ड्रिंक कहना इसको गलत नहीं होगा कि ये बहुत सी चीज़ें सॉल्व कर देती है चाहे वो आपके बॉडी में हो चाहे आपके रिश्तों में हो चाहे आपके दिमाग में हो एक चाय और परफेक्टली सब कुछ ठीक हो जाता है
2: बिल्कुल सही कर रिद्धि और बचपन में हम अक्सर सुनते थे बड़ों से कि भाई अगर बुखार आ रहा है जुकाम हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो भाई गर्म गर्म चाय पी ले भाई अब तेरा जो भी हेडेक वगैरह है वो

0: चीजें कम हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि रिद्धि, कि जो चाय है ना, वो घर में सिर्फ एक जने के हाथ की अच्छी लगती है। वो चाय सुबह बनानी हो, शाम को बनानी हो, या रात को बनानी हो, पीनी तो भाई मेरे को तो उसी के हाथ की है।
1: ये तो होता ही है। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर आ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो हेलो हेलो
0: हेलो
2: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार, बहुत
1: नमस्कार
0: बहुत स्वागत है आपका
1: जी।
0: युवाणी में।
2: हेलो,
0: हेलो,
2: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है संडे स्पेशल युवाणी। फोन इन पे बात चल रही है हमारी, और जो आज का जो टॉपिक है वो है चाय।
2: हाँ वो, हाँ जी सर, वो चाय के बारे में है।
0: जी
2: चाय तो क्या है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि चाय माता सरस्वती और पिए जो लखपति।
0: जी
2: हाँ चाय तो बचपन में खूब पी है सर।
0: और कभी आपने अपने हाथों से बना के किसी को पिलाई है?
2: हाँ सर पिलाई है सर।
0: क्या बात है।
1: चाय का कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें?
2: हाँ मैडम,
1: चाय के ऐसी कोई कभी कोई किस्सा रहा है आपके जीवन में? कोई कहानी जुड़ी रही है चाय से?
2: हाँ मैडम, ऐसा है कि मैं जब छोटे थे उस समय माता जी हमारे लिए चाय बना के उसमें रोटी चूर के खिलाती थी पहले। हाँ हाँ मैडम,
1: ये वाला कॉम्बिनेशन तो हमने भी ट्राई किया और इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसका कोई टक्कर ही नहीं है।
0: और ये सबसे बेस्ट
2: हाँ
0: ब्रेकफास्ट
1: मैडम,
0: है।
1: माँ के हाथ की चाय और रोटी।
2: ठीक है, माँ माँ जी का चाय याद आती है मैडम। ठीक
1: ये तो बात है।
2: है मैडम,
1: ओके सर, थैंक यू।
2: हाँ थैंक यू, ओके।
0: मतलब रिद्धि, हम सबसे बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है चाय के साथ है ना एक इमोशन है ना, वो जो सबका जुड़ा हुआ है।
1: ये तो है। और ये कहना गलत भी नहीं है कि इमोशन जब खाने से जुड़ जाता है ना, तो वो शायद आपकी रूह तक उतरता है। वो सिर्फ आपके शरीर तक नहीं, वो आपकी आत्मा तक जाता है। तो इसी के साथ शायद हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर आ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, हो सकता है वो भी अपनी चाय छानने गए हो। और ये होता है, बहुत बार होता है कि जब हम कोई चीज़ परफेक्शन से करना, अरे नितेश ऐसा भी होता है ना कि कई बार हम चाय बनाते हैं और ये बहुत बार होता है कि जब आप उस चाय को देखते रहोगे तब तो वो गिरेगी नहीं, और आप जैसे ही किचन से बाहर जाओगे, जैसे ही आपका ध्यान हटेगा, तो आपका पूरा किचन का प्लेटफॉर्म चाय पी लेता है।
0: बिल्कुल
1: ये
0: सही
1: जो
0: कहा।
1: एक्सपीरियंस होता है जब आपकी बहुत अच्छी बेहतरीन चाय बनी हो और जब वो उतरती है उस प्याले से और जब वो गिर जाती है, तो भाई ये तो बहुत कॉमन चीज़ है जो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होती है। और आपका कोई चाय से ऐसा जुड़ा एक्सपीरियंस?
0: चाय बस ये है कि जब भी मैं है ना, हमेशा गाना सुनते हुए किचन में सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। और अक्सर क्या होता है कि जब भी मैं गानों में खो जाता हूँ तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हो ही जाती है। और चलो, इस बीच हमारे जो आज के जो अगले कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं प्रोग्राम युववाणी में। हेलो,
3: हेलो,
0: हेलो जी, नमस्कार
3: नमस्कार सर। धर्मपुर से विनय बोल रहा हूँ सर।
0: जी। विनय, क्या करते विनय आप?
3: सर मेरी शॉप है सर।
0: अच्छा, तो शॉप है, तो शॉप पे जो सबसे ज्यादा चीज आती है ना वो चाय है। तो चलिए, चाय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसी टॉपिक पे बात आगे बढ़ाते हैं। कोई ऐसा किस्सा जो चाय से जुड़ा हो वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं।
3: सर एक किस्सा है सर, मेरा एक दोस्त है सर, मेरे को सर 4 बजे तक वो चाय पीने आता था सर।
1: अच्छा
3: पिछले सर साल बस सर वो आ नहीं रहा है, तो मैं सर उसके एफएम के जरिए उसको कहना चाहता हूँ कि तेरा यार तेरी चाय पे बाढ़ धो रहा है।
1: अरे क्या बात है, ये तो सबसे अच्छी जगह है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त भी ये चीज़ सुन रहे हो, और पक्का से ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए कि भाई ये वाली चर्चाएं नहीं रुकनी चाहिए, चाय कभी नहीं रुकनी चाहिए। और अगर कुछ बात भी हो गई जो उनको लाने से रोक रही है, तो वो एक बार फिर से आके चाय पे सुलझ जाए।
0: और विनय, मैं जानना चाहूंगा आपके दोस्त का नाम क्या है?
3: सर जयराम नाम है सर।
0: जी, तो चलिए जयराम जी, अगर आप भी हमारी और विनय की बात सुन रहे हैं तो जरूर उनकी शॉप पे जाइए, या फिर उस जगह जाइए जहाँ अक्सर आप बैठ के चाय पीते थे, एंजॉय करते थे, और जो दोस्ती के किस्से हैं वो एक दूसरे को सुनाते थे। तो रेडियो यही माध्यम है कि भाई जो दो लोग बिछड़े हुए होते हैं उनको मिलाते हैं, और ऐसे गाने प्ले करते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनकी कहानी है वो उससे लिंक कर पाए और एक दूसरे को समझ पाए।
1: और मुझे ऐसा लगता है विनय जी कि जो चाय है उस पे अगर कोई दिक्कत भी होती है ना, तो एक प्याला चाय अगर शेयर भी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है।
3: जाती है शक्कर की तरह।
1: जी, तो हमारी यही आशा है कि जयराम जी अगर इस कार्यक्रम को

0: सुन रहे हैं तो प्लीज अपने मित्र की दुकान पर जाइए और एक चाय तो बनती है इस शो के बाद.
1: थैंक यू मैम.
0: थैंक यू सो मच. तो नितेश, आज जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपने जैसा कहा कि चाय एक इमोशन है, तो ये काफी सच है. अगर आपकी आदत पड़ जाए कि आप किसी इंसान के साथ रोज चाय पीते हो, तो भाई वो तो एक सांस लेने वाली प्रोसेस के जैसा होता है कि इसके बिना तो बड़ा अजीब सा लग रहा है.
2: बिल्कुल. और आज का टॉपिक भी ऐसा है कि भाई एक के बाद एक जो हमारे लिसनर है वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस पे हमारे साथ चर्चा पे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि चाय चीज ऐसी है, मतलब जब भी एक कप चाय हाथ में आ जाता है तो लोग अक्सर बैठ के बातें करते हैं.
0: तो इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी आ चुके हैं. हेलो,
3: हेलो, गुड इवनिंग मैम.
0: गुड इवनिंग सर, क्या नाम है आपका?
3: दिनेश सोडा बात कर रहा हूँ मैडम.
0: दिनेश जी बताइए, चाय का महत्व बताइए आपके जीवन में.
3: मैडम चाय के बिना तो जिंदगी अधूरी लगती है. ऐसा लगता है कि सुबह उठो तो चाय, एक सुबह वाली और एक 4 बजे वाली चाय तो होनी चाहिए, कंपलसरी है ना.
0: और मेरे ये भी चीज,
3: हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी पीते हैं, लेकिन चाय में जो मजा है वो कॉफी में नहीं आता मैम.
0: ये तो है,
3: ना जाने क्यों
0: जो लोग चाय के प्रति है वो कॉफी से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाते.
3: जी जी वो सर्टिफाइड होते ही नहीं कि कॉफी चाहे हॉट कॉफी हो चाहे कोल्ड कॉफी हो, लेकिन जो चाय में मजा ना वो उसमें नहीं. चाय के अलग अलग फ्लेवर होते हैं. जैसे मैं दिल्ली गया था वो अलग ही ग्रीन टी लेमन टी है ना, अलग अलग. मतलब एक चाय पे मेरा एक जुड़ा किस्सा है. मैं जब पढ़ाई करता था स्कूल में करता था, तब एक एक्चुअली एक लड़की थी मैम, वो हमेशा ना वो कहती थी आप मतलब सर के लिए और हमारे क्लास के लिए सबके लिए वो चाय बना के लाती थी.
0: अरे वाह.
3: तो जी उसको सर हमेशा उसको ही कहते सर मैम, उसके बोलते कि तू आ चाय बना. तो वो बहुत ही शानदार टेस्टी चाय बनाती थी. उसकी चाय का टेस्ट आज भी मुझे याद है मैम.
0: क्या बात है, मतलब चाय से इतनी यादें जुड़ी होती है, इतने किससे जुड़े होते हैं, ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे भारत पे कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में बस बस जाती है.
3: जी मैम.
0: तो दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए.
3: थैंक यू, थैंक यू.
0: तो श्रोताओं, अगर आप भी अपने मन की बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 02912553300 और दूसरा नंबर है 2554300 और हिंदी में बताएं तो ये है 2553300 और दूसरा नंबर है 2554300. तो आप भी हमें कॉल करके अपने इस चाहे की जो इमोशन को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं. इसी के साथ अगले कॉलर भी आ चुके हैं. हेलो, हेलो, हेलो. कोई बात नहीं, अगर आप भी बात करना चाहते हैं तो नंबर आपको बताई दिए हैं. और शाम बड़ी प्यारी सी है तो यही लग रहा है कि सब लोग अभी चाय पीने में व्यस्त होंगे और संडे का दिन और चाय ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता. अभी आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं ये वाला ट्रैक.

0: इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ साथ जो हमारे आज के जो अगले लिसनर है वो जुड़ चुके हैं, तो चलिए प्रोग्राम युवाणी में उनका सबसे पहले करते हैं स्वागत। हेलो
1: सर, नमस्कार। सर,
0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम कन्हैयालाल भाटी है। सर,
0: कन्हैयालाल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं जोधपुर सिटी से ही बात कर रहा हूँ सर।
0: जी
1: मैं प्रोविडेंट फंड ना ऑफिस में जॉब करता हूँ,
0: जी
1: सेक्शन सुपरवाइजर।
0: जी
1: चाय के बारे में हुआ तो मैं मतलब कई बार फोन लगाता हूँ, लेकिन आज ये चाय का टॉपिक आया तो मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: क्या बात है, क्या बात है। और ये टॉपिक भी ऐसा है, इस पे कॉल आना ही चाहिए।
1: यस सर। और चाय आपका दिन तय करती है कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। अगर सुबह आपने चाय बहुत अच्छे से आपको मिली है तो, और फिर हमारा जो टाइमिंग रहता है, कई बार ये लोगों का फिक्स टाइमिंग रहता है सर कि भाई मतलब मॉर्निंग के बाद में ब्रेकफास्ट, बाद में लंच से पहले और लंच के बाद में, तो
2: जी
1: चाय मतलब पूरे रूटीन का हिस्सा रहती है आपका।
2: मतलब एक सुबह की अच्छी चाय आपका दिन डिसाइड कर देती है।
1: यस, वो दिन डिसाइड करेगी। प्लस जो आपने अभी बताया था कि आपका दिमाग, आपके रिश्ते, आपका मन, आपकी सोच और आपका वर्किंग स्टाइल, एवरीथिंग वो चाय पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और चाय अगर सही से हो गई तो आप समझो कि पूरा दिन बहुत ही पॉजिटिव और एकदम बढ़िया एनर्जी के साथ निकलेगा।
2: ये तो है सर, ये चाय की इस बात को हम नकार नहीं सकते कि एक चाय जो खूबसूरत सी मिल जाए सुबह सुबह तो पूरा दिन बन जाता है।
1: जी मैम, और चाय भी मतलब चाय से सारी चीजें सॉल्व होती है मैम। आप अपना वर्किंग कर रहे हो वो भी आपका कंप्लीट, और खास तौर से जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट जब मैं था, तो तब तो मेरे लिए चाय एक तरह से रामबाण थी कि आप, और एक मैन ये था कि रात को मेरे मतलब रात को पढ़ने की मतलब है ना ड्यूटी मेरी, तो रात को पढ़ने के लिए आपको चाय चाहिए और चाय के बिना आपको नींद आ जाएगी। तो मैं 11 बजे अगर मेरे को एक चाय मिल जाती तो सुबह के 4 बज जाते थे। ये मतलब सबसे बड़ी चीज थी।
2: ये तो
1: और
2: ह्यूमन
1: क्योंकि
2: पेट्रोल
1: चाय
2: का
1: ने
2: काम
1: मेरे
2: करती है
1: कैरियर को
2: जो
1: बनाने में, मेरी जिंदगी बनाने में सही होती है। चाय
2: जी
1: जिंदाबाद मैडम।
2: सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आपका चाहे से जो प्रेम है इसे ही बना रहे। तो नितेश, ये बात तो है कि हम चाय को अगर बोले कि ये ह्यूमन पेट्रोल है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। एक अच्छी चाय मिल जाए और उसके बाद जो दिन की स्पीड भागती है, उसके बाद जो खुशी मिलती है, इसकी तो है ही कोई अलग, वो कहते हैं ना कंपटीशन ही नहीं है। पर हाँ, जो अभी यंगस्टर्स हैं उनको मैं ये बोल के भी खुश करना चाहूंगी कि खुश तो क्या, हमें खुद को कॉफी बहुत पसंद है। एक स्ट्रांग कॉफी मिल जाए, एक स्ट्रांग ब्लैक कॉफी मिल जाए या फिर एक स्ट्रांग कोल्ड कॉफी मिल जाए तो भाई ऐसा लगता है कि यार अगर शरीर में थोड़ी सी भी वीकनेस है, थोड़ी सी भी थकान लग रही है तो वो कॉफी दूर कर देती है।
0: तो रिद्धि, मैं यही साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि आपको चाय पसंद है या फिर कॉफी?
2: देखो, ये सवाल ऐसा है जिसका अगर मैं जवाब दूं तो मैं खुद के साथ नाइंसाफी करूंगी, क्योंकि मुझे चाय और कॉफी दोनों अपने अपने लेवल पे बड़ी पसंद है। जब बारिश आ रही हो, बहुत तेज बारिश आ रही हो और पकोड़े

0: वो तो उसके साथ कॉफी का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बेकार लगता है. उसको लगता है कि बहुत स्ट्रांग चाय होनी चाहिए, एकदम अदरक वाली, तुलसी वाली, और जो उसकी खुशबू होती है, जो अरोमा होता है चाय का, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. और अगर आप बात कर रहे हो ऐसा दिन जो आपको पूरा थका के ख़त्म कर दिया है, मतलब आपके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं है, उस वक्त जो कोल्ड कॉफ़ी का इफेक्ट होता है, जो आपकी शरीर को हिट करती है, फिर लगता है कि नहीं, सबसे ज़्यादा ताकत तो मुझ में ही है. तो यहाँ पर जो चाय कॉफ़ी का कॉम्पिटिशन है मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही इक्वल लेवल पर विनर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते. तो ये है ही मेरी लाइफ में चाय की और कॉफी की इंपॉर्टेंस. इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी आ चुके हैं. हेलो,
1: हेलो.
0: नमस्ते मैम.
1: हाँ मैम, मेरा नाम प्रीति है.
0: जी मैम, बताइए.
1: और चाय को लेकर मुझे मेरी मम्मी की बड़ी याद आती है. सुबह पहली चाय से लेकर के रात को 11 बजे तक औसत जाती है उनके पास
0: चाय तो, और उसमें जो आप चाय पीते हैं सबसे ज़्यादा अपने प्यारे इंसान के साथ, वो चाय और खास हो जाती है. मतलब उसमें कुछ चीज़ कमी भी होती है ना, तो जिसने बनाई है या जिसके साथ पी रहे हैं, वो कमी वो चाय पूरी कर देती है.
1: बिल्कुल मैम. मतलब चाय है तो मम्मी है, तो
0: बड़ी
1: चाय
0: खूबसूरत
1: हम आते ही मम्मी की याद आने लगती है. चाहे
0: जी.
1: रात को देर रात तक पढ़ रहे हैं तो मम्मी चाय का कप लेकर के आ जाते हैं. सुबह मम्मी चाय, दोपहर को चाय, तो बस जिससे चाय का नाम आता है मम्मी की याद आती है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा स्पेशल है लाइफ में.
0: ये तो है. और ये एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ से अपने प्यारे इंसान को लिंक कर दिए, तो फिर आप उसे कभी भूल ही नहीं सकते. वो हमेशा आपके साथ रहते हैं,
1: यस मैम.
0: चाहे वो कहीं पे भी हो, पर वो हमेशा आपके साथ है. वो चाहे चाय के जरिए हो, चाहे उस चाय की खुशबू के जरिए हो, आप उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं.
1: यस मैम.
0: मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए.
1: थैंक यू.
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं हमारे प्यारे प्यारे गाने, और चाय पे चर्चा तो बनती रहेगी.

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: बार बार कॉल आ रहे हैं, उससे हमें ये पता चल रही है कि जो टीम चाय है ना उनके कॉल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और जो कॉफी लवर है ना उनका अभी तक एक भी कॉल नहीं आया। और मैंने इस गाने से पहले भी रिद्धि से पूछा था आपको चाय पसंद है या फिर कॉफी, इन्होंने दोनों को वोट दिया। और मैं हूँ कॉफी लवर, तो मैं चाहता हूँ जितने भी युवा साथी सुन रहे हैं और जो कॉफी लवर है तो वो भी थोड़ी कॉफी के बारे में जो भी चर्चाएं हैं, जो भी किस्सा उनके साथ जुड़ा हुआ है एक चाय से लेके या फिर एक कॉफी से लेके या फिर एक वो मोमेंट जो वो कभी भूलना ही नहीं चाहता, तो वो ऐसे मोमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपका फेवरेट प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, संडे स्पेशल फोन इन प्रोग्राम, और बहुत कम मौका मिलता है आपको हम लोगों से बात करने का, तो बिल्कुल इस वक्त को आप जाया ना करें और जल्दी से जल्दी अपने खूबसूरत मोबाइल फोन में एक नंबर डायल करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे नंबर है 02912553300, और जो हमारे दूसरे नंबर वो है
2: 2554300। और जैसा कि नितेश ने कहा कि टीम चाय का पलड़ा भारी है, इसको कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि हाँ भाई जो चाय पे बात करते हैं उनमें वो चीज़ होती है, वो कहते हैं ना एक्सप्रेस करने का जो क्या कह सकते हैं जुनून होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि चाय चीज़ ही ऐसी है। और ये जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है अभी तक लाइफ में वो ये है कि जो कॉफ़ी लवर्स होते हैं ना नितेश, वो थोड़े से सोफिस्टिकेशन और इंट्रोवर्ट से होते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ, कोई भी डिसीजन होता है तो वो बस अलग से बैठ जाएंगे, अपनी कॉफी को अपने साथ एंजॉय करेंगे और अपने दिमाग में बस ऐसे थॉट्स और जो जितने भी स्टेटमेंट है वो अंदर ही अंदर रिपीट करते रहेंगे। तो जिन लोगों के दिमाग में कॉफी का फेवरिज्म चल रहा है, और भाई कॉफी भी बहुत प्यारी चीज है, तो आप हमें जरूर से बता सकते हैं, नंबर बता दिए।
1: और बिल्कुल रिद्धि सही कहा कि मतलब अगर कोई कॉफी पीता हुआ कि हमें अगर कैफे में दिखेगा कोल्ड कॉफी पीता हुआ तो वो एक होगा या फिर दो होगा, बट हम अगर चाय की टफरी की तरफ नजर मारे ना तो भाई

0: एक साथ कितने सारे लोग बैठ के चाय पीते, तो वो तो हम सबने को क्लियर भी हो गया कि भाई चाय सबसे ज्यादा लोगों को पसंद होती है। और इसी बीच इसी चर्चा पे जो हमारे अगले कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं उनसे। हेलो, हाँ
1: हेलो,
0: जी, क्या नाम है आपका,
1: मेरा नाम अरविंद है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ।
0: तो चलिए फिर चाय पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसी चर्चा को कंटिन्यू रखते हैं। और आप बताइए इस किस्से के बारे में कुछ।
1: चाय हमारी जीवन के दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। चाय
0: क्या बात है।
1: के बिना किसी भी मारवाड़ी आदमी की सुबह नहीं होती है।
2: अरविंद, आप स्टूडेंट हैं?
1: चाय भी जो रोजाना नहीं पीते हैं उनके अलग बात है, पर जो रोजाना चाय पीते हैं अगर 1 घंटा भी आगे पीछे हो जाए तो उन्हें उबासी आने लगती है।
2: ये
1: अब
2: चीज तो
1: मैं
2: है।
1: कहना चाहता हूँ कि कॉफी हो या कुछ भी, चाय का मुझे चाय नहीं है।
2: क्या
1: चाय का
2: बात है,
1: मजा,
2: क्या
1: हाँ
2: बात है। अरविंद, आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में हैं?
1: मैं 9th में आया हूँ अभी।
2: क्या बात है,
0: 9th
2: तभी तभी आपने है ना चाय पे निबंध लिख दिया है। चाय ऐसा होता है, चाय वैसा होता है। बिल्कुल, जो चाय है वो ऐसी ही होती है। सबकी अलग अलग कहानी होती है, सबका अलग अलग इमोशन होता है। आपको बड़ी पसंद है चाय, ऐसा लगता है। पसंद है आपको चाय बहुत ज्यादा?
1: बहुत ज्यादा नहीं, पर कभी कभी थकावट होती है, पढ़ाई करते परीक्षा के समय कभी कभी पी लेते हैं।
0: तो आज की जो शाम की चाय है वो आपने किसके साथ बैठ के पी है?
1: मैं नहीं आया हूँ छुट्टियों में, तो मैंने मामा के साथ पी है।
2: अरे
1: क्या
0: बात है,
1: वाह,
0: क्या बात है।
2: ये चाय तो और स्पेशल होगी कि
0: बिल्कुल
2: ननिहाल की
0: बिल्कुल।
2: चाय।
0: छुट्टिया प्लस ननियाल प्लस चाय।
2: और शाम, बस अब थोड़ी देर से आप कुछ ना कुछ बाहर खेलिए, एंजॉय कीजिए इस
0: और
2: टाइम को।
0: हाँ, मामा को भी नहीं भूल सकते भाई। अरविंद ने कहा है मामा के साथ बैठ के चाय पी है, तो उनको भी याद करना पड़ेगा। और अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वैकेशन के टाइम में से टाइम निकाल के हमें कॉल किया, और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।
2: तो रितेश, ये आज बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक लगा जो हमने आज चूज किया है। ऐसा लग रहा है कि हर तरह के इमोशन आ रहे हैं, मतलब बड़े से लेके बच्चे तक, और सब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये फैक्ट एक्सेप्टेड है कि भाई चाय और कॉफ़ी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये हमारे देश की, हम कह सकते हैं, अगर इसे हम सोशल ड्रिंक करें, डिक्लेयर नेशनल सोशल ड्रिंक, तो ये कहना गलत भी नहीं होगा। और जैसा आपने कहा था अभी कि हम किसी भी चाय के टपरी पे जाएं तो हम देखते हैं कि जो क्राउड है वो बहुत सारा होगा। आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो अकेले बैठकर चाय पीते हो। वहां पर अनजान भी दोस्त बन जाते हैं, वहां पे जो चाय का दुकान ओन करते हैं वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। उन्हें पता पड़ जाता है कि कौन बिना शक्कर की चाय पीता है, कौन शक्कर की चाय पीता है। तो ये जो चीज़ है भाई, ये दोस्ती और प्यार बढ़ाती है। और ये जो चीज़ हम देखते हैं, जो कपल्स होते हैं, जो लवर्स होते हैं, तो इनमें भी एक अलग सा एडिक्शन ये होता है कि भाई चाय तो उसी के हाथ की पीनी है, और जब तक उसके हाथ की चाय नहीं मिलेगी, दिन की शुरुआत, पूरा दिन बड़ा अधूरा सा लगता है। तो हाँ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है दिमाग में हमारे भी चाय को लेके, और आप भी हमें बता सकते हैं। और नंबर हम आपको फिर से बता देते हैं, वो है 02912553300, और दूसरा नंबर है 2554300। हाल फिलहाल हमारे अगले कॉलर आए हैं, उनसे भी कर लेते हैं बातचीत। हेलो
3: हेलो,
2: जी
3: नमस्कार
2: सर।
3: मैडम, मैं अब आप सबको चाय की दावत देता हूँ। आप आए और चाय चाय पी सकते हो, पी कर आना पड़ेगा मैडम।
2: ओके
3: जब आपने सबको चाय की इतनी लत लगा रखी है कि सब बड़े बूढ़े बच्चे सब सब जने आपके पास में फोन लगाने में लगे रहे हैं मैडम।
2: अच्छा टॉपिक है ना सर, किसी चीज पे तो चर्चा होनी चाहिए।
3: जी जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए मैडम। सुबह नाश्ता का भी होना चाहिए, चाय का भी होना चाहिए, और कई संडे को तो स्पेशल भी होना ही चाहिए मैडम।
2: बिल्कुल होना चाहिए। और जब संडे की शाम हो और अगर आप अपने दोस्तों के साथ चाय नहीं पी रहे तो क्या मतलब।
3: पूरे हफ्ते काम में लगे रहे और संडे को ही चाय पे, नाश्ता पे, होटलों में, सब जगह मजे करते रहे।
2: बस ये लाइफ इम्पोर्टेंट है, ये जो एंजॉयमेंट होता है ना, छोटी छोटी खुशियाँ।
3: दावत है मैडम।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर
3: जी, कबूल फरमाइए मैडम
2: जी। और जैसा आपने कहा है, चाय पीने हम जरूर आएंगे, और इस बात के लिए, इस निमंत्रण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू मैडम।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, चाय पे चर्चा नहीं रुक रही है, अभी तो हम आगे चलते हैं और गाने भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि चाय के साथ गाने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।

0: पड़ा कि हमारे भारत में रोजाना यानी हर दिन 800 मिलियन से 1 बिलियन तक की 1 बिलियन कप तक चाय हर रोज लोग पीते हैं. मतलब हमारे भारत में 1 बिलियन कप ऑफ टी रोज कंज्यूम किया जाता है. तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं ये जो संख्या है, ये जो मात्रा है, ये सिर्फ एक दिन की है. तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चाय का क्रेज है हमारी कंट्री में वो कितना ज्यादा है. और सोच के ये भी लगता है कि हर जगह की चाय अलग होती है. बहुत जगह पर चाय सिर्फ दूध की बनाई जाती है, बहुत जगह पर थोड़ा पानी ज्यादा दूध कम वाली चाय होती है, बहुत जगह पर बिना शक्कर की चाय बनती है, और बहुत जगह पर चाय को कावा भी कहा जाता है, और फिर कहीं देखें तो मिंट टी भी बनती है, फिर लेमन टी भी आती है, और एकदम सोफिस्टिकेशन के अपर लेवल पर जाएं तो वहां पर ग्रीन टी भी बनती है. और जो ग्रीन टी के शौकीन लोग होते हैं भाई, उनको कैसे वो चाय भाती है वो तो वही जानते हैं. पर हाँ, उसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं. तो सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि हमारे भारत में इतने स्टेट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो हर जगह पर चाय का एक अलग जायका होता है, अलग तरीका होता है. तंदूर में भी चाय बनती है, और उस तंदूरी चाय का जो मजा होता है, अगर आप एक बार तंदूरी चाय पी लें, अगर आप एक देसी टी लवर हैं और आपने तंदूरी चाय पी ली, तो भाई साहब फिर उसका कंपटीशन आपको नहीं मिलने वाला.
1: बिल्कुल सही कहा। और तंदूरी चाय में जो तंदूरी का जो कप होता है, वो मिट्टी की खुशबू के साथ जो चाय है ना, वो बिल्कुल ही लाजवाब लगने लगती है। और ऐसा लगता है कि भाई उस समय बारिश हो या ना हो, बट ऐसा लगता है कि भाई बारिश में उस चाय को हम इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल रिद्धि, और हमने चाय की बात कर ली है, और कॉफ़ी की भी बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर कॉफ़ी की बात करें तो एस्प्रेसो, अमेरिकानो, कैपेचिनो, लाते, मोचा, माकियाटो, फ्लैक वाइट, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ब्रू और फिल्टर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के भी ढेर सारे प्रकार है। हर किसी के अलग अलग फ़ायदे हैं पीने के। तो बस आप चाय पियो या फिर कॉफ़ी पियो, दोनों ड्रिंक्स को बहुत इंजॉय करो और हमारे साथ जुड़ते रहिए। और क्योंकि जो अब वक्त है वो वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास, तो जितने भी युवा साथी है हमारे साथ इस टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि हमारे नंबर है 02912553300। जो दूसरे नंबर है वो है 02912554300।

0: तो दोस्तों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का. और ये जो आज की शाम थी, बड़ी ही खूबसूरत थी. जो चाय कॉफी पे डिस्कशन हुआ है, कॉफी का तो नाम नहीं लूंगी, पर हाँ, जो चाय का आज प्यार हमारे रेडियो पे आया है, वो प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, आपके जीवन में अच्छी अच्छी चाय आती रहे, अच्छी अच्छी चर्चाएं होती रहे, और आपका जो क्वालिटी टाइम है उसको किसी की नज़र ना लगे. और हमारी यही आशा है कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे. और अभी आपके साथ जुड़ी थी दो प्यारी आवाजें. मेरा नाम है रिद्धि.
1: यशोदा, मैं था आप लोगों के साथ आपका रेडियो दोस्त नितेश. और हर घूंट में यादों का एक अफसाना होता है, कभी चाय से दिल तो कभी कॉफी से मुस्कुराना होता है. जिंदगी की दौड़ में बस इतना सा हुनर रखना, अपने लोगों के लिए हमेशा थोड़ा सा वक्त रखना.
0: नमस्कार.
2: हम FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं. शाम के 6 बजने वाले हैं. अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे.
3: मीडियम वेव 564.97 मीटर.
4: भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई. बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की. बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की. दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की. डॉ. जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया. इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है. गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है. गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया. गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया. सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

0: मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह एफएम सनसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं यूसुफ खान, लेकर हाजिर हूं आज का गुड इवनिंग जोधपुर। सभी जोधपुर वासियों को करते हैं हम गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज का गुड इवनिंग जोधपुर प्रोग्राम। बस

आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य, जानिए सनातन धर्म पुनर्जन्म आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।

102.1 FM पर आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग जोधपुर प्रोग्राम। दोस्तों, अभी जोधपुर का जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री है, ह्यूमिडिटी जो है 31% है, यानी गर्मी तेज है और शाम के 6:15 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो धूप बहुत तेज है, धूप बहुत अनईजी करने वाली है, इसलिए संभल के बाहर निकलें और पानी पीते रहें, अपने जो बॉडी है उसका हाइड्रेशन लेवल, हाइड्रेट रखें उसे, तभी आप इस भीषण गर्मी से बच सकते हैं। और इस बीच अच्छी खबर यह है कि हमारी सिटी के एनवायरनमेंट लवर और जागरूक नागरिक लगातार शहर के वाटर सप्लाई के मेन सोर्स यानी कि कायलाना झील की सफाई जो है वो लगातार कर रहे हैं और दोस्तों उनकी इस जो ये उनका अभियान है वो बहुत अच्छा चल रहा है और लगातार कायलाना झील पर सफाई अभियान चल रहा है, जिसमें कि कैचमेंट एरिया में जो प्लास्टिक आइटम्स हैं, पॉलीथीन हैं, पूजा सामग्री है, झाड़ियाँ और घरेलू कचरा जो हो रहा है उसको लगातार एक मुहिम चलाकर उसको बाहर किया जा रहा है और इस मुहिम में बहुत लोग लगातार जुड़ रहे हैं।

जी हाँ, जो लोग अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करके चलाते हैं और इलीगल नेम प्लेट लगाते हैं और ब्लैक फिल्म लगा के अपने विंड स्क्रीन या साइड के कांचों पर लगाते हैं और विंड स्क्रीन पर इलीगल शब्द लिख लेते हैं, वर्ड लिख लेते हैं, तो उन जो भी वाहन चालक हैं और गाड़ी रखने वाले हैं जो भी, उनको बहुत सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि RTO जोधपुर ने अब 4 जून से इस तरह के जितने भी व्हीकल ऑनर हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाकर कार्रवाई करने का फैसला किया है। जिन जो गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं और जो विंड स्क्रीन पर इलीगल वर्ड लिखवा लेते हैं, उन सब के खिलाफ ये अभियान चलने वाला है। गुड इवनिंग, जोधपुर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 102.1 FM पर। डॉक्टर जी फिल्म का ये गाना है आयुष्मान खुराना की आवाज में।

जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना FM सनसिटी।

दोस्तों, शहर में पड़ रही भीषण गर्मी का असर ब्लड बैंक्स पर भी पड़ रहा है। शहर की जितनी भी ब्लड बैंक्स हैं उनमें रक्त संकट गहरा गया है। दरअसल हो ये रहा है कि गर्मियों के मौसम में कंपैरेटिवली लोग ब्लड डोनेट कम करते हैं और इसी वजह से ब्लड डोनेशन कैंप्स भी कम आयोजित होते हैं और यही कारण है कि ब्लड जो है वो कम इकट्ठा हो पाता है, जबकि जो शहर के अस्पताल हैं उनमें डेली एक्सीडेंट के जो केसेस हैं, थैलीसीमिया के जो पेशेंट हैं, कैंसर के जो पेशेंट हैं, उनके लिए 150 यूनिट प्रतिदिन की जो है वो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और उनमें भी ए और बी नेगेटिव की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन गर्मी की वजह से ब्लड डोनेशन जो है वो कम हो रहा है और इस वजह से ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी हो गई है। लेकिन इनमें अच्छी बात यह है कि हमारे जो शहर की स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन्होंने इस संकट को निपटने की पूरी तैयारी कर ली है और वो लगातार कैंप लगा रहे हैं और कैंप के लिए उन्होंने आगे जो संडे हैं हर रविवार को जिस हॉस्पिटल में कमी हो उसमें कैंप लगाने की ठानी है और स्वयंसेवी संस्थाओं ने संकल्प ले लिया है कि वो इस ब्लड डोनेशन की कमी को जल्द ही पूरा कर लेंगी। 102.1 FM पर बने हुए हैं, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग जोधपुर प्रोग्राम।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: सौम्यता है इसकी पहचान।
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM सन सिटी।

दोस्तों 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था और इस दिन शहर की जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयंसेवी संस्थाएं, उन्होंने एक नया प्रयोग करते हुए शहर की जो क्लाइमेट है उसको देखते हुए सीड बॉल बनाई है और सीड बॉल में उन्होंने नीम, जामुन, कदम और क्लाइमेट के जो अनुकूल छायादार पौधों के बीज जो है वो तैयार किए हैं और इन्हें मिट्टी और खाद से बॉल नुमा आकार दिया है। और जब बारिश का मौसम अब आने ही वाला है तो ये संस्थाएं जो हैं वो शहर के पहाड़ी क्षेत्रों में और जो बंजर भूमि है वहां जाकर इन सीड बॉल्स को बिखेरेंगी ताकि जैसे ही पहली बारिश शहर में होती है ये सीड बॉल जो है वो अंकुरित होकर पौधे का रूप लेंगी और आने वाले फ्यूचर में एक पेड़ बनकर, छायादार पेड़ बनकर हमें जो है वो फायदा देंगी। और इस काम में शहर के कई वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और ये संस्थाएं जो हैं वो शहर के क्लाइमेट के फायदे के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कैसे क्लिक में अरे वाह
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

गुड इवनिंग, जोधपुर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और जोधपुर सिटी में जोधपुर की कमिश्नरेट पुलिस जो है वो इन दिनों ऑपरेशन उमंग के जरिए चाइल्ड लेबर और भिक्षावृत्ति से जो बच्चे परेशान हैं, जो उस भिक्षावृत्ति के शिकार हैं, चाइल्ड लेबर के शिकार हैं, उनको रेस्क्यू कर उनका रिहैबिलिटेशन कर रही है। आप भी अगर ऐसे किसी किन्हीं बच्चों को देखते हैं जो भिक्षावृत्ति के शिकार हैं या चाइल्ड लेबर के शिकार हैं तो आप पुलिस से संपर्क करें और या बाल कल्याण समिति से संपर्क करें ताकि इन बच्चों का भविष्य सुधर सके और उनको जो है वो रिहैबिलिट किया जा सके।

अभी आप सुन रहे थे हमारा स्थानीय कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। हम एफएम सेंसिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब विशेष जयमाला कार्यक्रम हम रिले करेंगे विविध भारती से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
3: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: آزادی ذرا یاد کرو قربانی.
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार. शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा.

साथियों, हमारी जिंदगी पल दो पल की होती है। सच पूछिए तो हमें खुद पता नहीं होता कि हमारी सांसें कब तक हमारा साथ देंगी। हम इसी भ्रम के जाल में उलझे होते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारी उम्र बहुत है। दुआ तो हम यही करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति लंबी उम्र जिए, लेकिन होनी अनहोनी कब हो जाए किसे पता होता है? और जिन्हें इसका पता होता है वे है हमारी भारतीय सेना के वीर जाबाज रणबांकुरे। वे जब सेना में जाने की ठान लेते हैं, ये जानते हुए भी कि जिंदगी का क्या भरोसा, युद्ध भूमि से लौट पाऊंगा या नहीं, या इन दुर्गम बर्फ के दर्रों में, पहाड़ियों में, वीरान इलाकों, घने जंगलों या गर्म तपते रेगिस्तान में अपनी जिंदगी की बाजी खेलनी होगी। जीत मिलेगी या हार, वे तनिक भी इसकी परवाह नहीं करते और युद्ध भूमि में अपना सीना ताने चौक

0: कस चौकन्ने चट्टान की तरह खड़े रहते हैं।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की

साथियों, दुश्मनों को देखकर वे ऐसी हुंकार भरते हैं, ऐसी गोलियों की बौछार करते हैं कि उनके छक्के छूटने लग जाते हैं। मरेंगे या मार कर आएंगे, कदम ना कभी पीछे हटाएंगे, ऐसी ज्वाला सीने में धधकती रहती है। यही जज्बा एक शौर्य गाथा की कहानी बन जाता है। आज हम भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार महावीर चक्र की कड़ी में ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं।

ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल का जन्म 14 जून 1899 को सांबा जिले के बगुना गांव, जो अब राजेंद्रपुरा है, में हुआ था। सांबा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक नगर है। ये भारत व पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। बेहद खूबसूरत नजारों, हरी भरी वादियों से घिरा ये सांबा नगर अपना अनूठा इतिहास रखता है। इसी धरती पर जन्मे कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। वीरता शौर्यता की हवाएं जिस परिवार में हिलोरे लेती हो, वहीं के आप ऐसे वीर लाल हैं। आपके परिवार में बहादुरी और बलिदान की गाथाएं, किस्से, कहानियां भरी पड़ी हैं। आपके पूर्वज जनरल बाज सिंह ने लगभग एक सदी पहले चित्राल की रक्षा में खुद को बलिदान कर दिया था। आपके दादा हमीर सिंह और पिता सूबेदार लाखा सिंह ने भी एक सैनिक के रूप में अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना उत्कृष्ट बलिदान दिया। दोनों युद्ध के दिग्गज योद्धा थे। आपका एक सैन्य डोगरा राजपूत परिवार था।

था। आपने जम्मू के साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर 14 जून 1921 को जम्मू कश्मीर आर्म्ड फोर्स में कमीशन लिया था। वे मई सन 1942 में ब्रिगेडियर की रैंक पर पहुंच गए थे और अपनी मेहनत और बहादुरी के चलते 25 सितंबर सन 1947 को मेजर जनरल रैंक पद पर पदोन्नत हुए, यानी जम्मू कश्मीर बल के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जम्मू कश्मीर की सेना के इकलौते ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने खुद युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परचम लहराया। उनकी वीरता साहस की गाथा से जम्मू कश्मीर का इतिहास रोशन हो उठा। साथियों, तभी तो उन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर के रूप में याद किया जाता है, यानी कश्मीर का रक्षक।

ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह को उनके चाचा लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह ने पाला था। कम उम्र में ही अपने पिता को वे खो चुके थे। साथियों, कितने गर्व की बात है कि आपके परिवार की कई पीढ़ियों ने भारत माता की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।

0: कार्यक्रम विशेष जयमाला में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम विशेष जयमाला के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा। अमर शहीदों से रोशन है अपना हिंदुस्तान, अमर शहीदों से रोशन है अपना हिंदुस्तान, व्यर्थ न जाएगी यूं उनकी अब ये कुर्बानी, बच्चा बच्चा नमन करेगा, श्रद्धा सुमन चढ़ाएगा, गीत उन्हीं के गाएगा, गीत उन्हीं के गाएगा। साथियों, भारत अंग्रेजों से आजाद तो हुआ लेकिन विभाजन से दंगा फसाद चरम पर पहुंच गया था। सुंदर वादियों, कलकल बहती नदियां, हिम शिखर और मनमोहक रंगों से घिरे खूबसूरत फूलों के इलाके, ऐसा लगता था कि किसी की नजर लग गई हो। सांप्रदायिकता की ज्वाला ने जम्मू कश्मीर को भी नहीं बख्शा, उसे अपनी चपेट में ले लिया था। लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो चुके थे, हालात बड़े ही भयावह होते जा रहे थे। ऐसे में दुश्मनों की नजर पैनी हो चुकी थी। देश की आजादी के बाद दुश्मन सेना ने कबालियों के साथ मिलकर ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कश्मीर पर कब्जा करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सन 1947 को उस समय जो वहाँ के महाराजा थे महाराजा हरि सिंह, जब उन्होंने मुजफ्फराबाद पर दुश्मन सेना के कब्जे की खबर सुनी तो उन्होंने खुद दुश्मन से मोर्चा लेने का फैसला करते हुए सैन्य वर्दी पहन ली और उन्होंने तब ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह

को बुलवाया। ये बात सुनते ही कि महाराजा खुद युद्ध भूमि में उतरना चाहते हैं, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उन्हें किसी तरह से समझाया कि उनका इस तरह से जाना सही नहीं है, वे खुद उनकी जगह दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। महाराजा हरि सिंह को मोर्चे से दूर रहने की सलाह दी। साथियों, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने महाराजा के साथ एक बैठक में अपनी योजना पर विचार किया और बाद में बादामी बाग पहुंचकर करीब 100 सिपाहियों से जाकर मुलाकात की और अपनी योजना समझाई। उन्होंने तत्काल ही सैन्य मुख्यालय को संपर्क किया और अपने लिए और सैनिकों के दल की मांग रखी। उस वक्त मुख्यालय में ब्रिगेडियर फकीर सिंह मौजूद थे। उन्होंने करीब 70 जवानों को मोर्चे पर भेजने की बात कही और उधर महाराजा हरि सिंह ने मुख्यालय की कमान अपने हाथों में लेते हुए एक लिखित आदेश दिया कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को आदेश दिया जाता है कि वो हर हाल में दुश्मनों को आखिरी सांस और आखिरी जवान तक उरी के पास ही रोके रखें। कैप्टन ज्वाला सिंह संदेश के साथ 24 अक्टूबर की सुबह एक छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ उरी पहुंच गए। कैप्टन ने सैन्य टुकड़ी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को सौंप दी और महाराजा का पत्र भी उन्हें दिया। इस मोर्चे पर वे अपना सर्वस्व निछावर करने को

अब ब्रिगेडियर अजिंदर सिंह ने अपने साथी कैप्टन नसीब सिंह को उरी नाली पर बने एक पुल को उड़ाने का हुक्म दे डाला ताकि दुश्मनों को रोका जा सके, उनके नापाक इरादों को रौन दिया जाए। दुश्मनों की सेना में जब इसकी खबर लगी तो उनमें हलचल होना, रुकावट होना स्वाभाविक थी। अब क्या करें? कुछ समय के लिए वे रुक गए थे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी थी। हमला दोनों तरफ से भयंकर था। उरी का वो इलाका गोलियों की बौछार से थर्रा उठा था। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। उस जगह करीब दो घंटे बाद फिर से दुश्मनों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी थी, लेकिन तब तक पुल उड़ाया जा चुका था। वहाँ के सभी पुल लगभग तहस नहस कर दिए गए थे, यानी मार्ग बाधित कर दिया। शाम तक अपने मिशन के तहत ये कार्यवाही अंजाम ले चुकी थी, लेकिन

उधर दुश्मन भी कब रुकने वाले थे, वे भी आ गए। साथियों, इसके बाद ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह ने रामपुर इलाके में दुश्मनों को रोकने का फैसला किया और काली स्याह रात में ही वे वहां जा पहुंचे और उन्होंने अपने लिए खंदक खोद डाली। रात भर कड़ी मेहनत कर जवानों ने खंदक खोदी थी, लेकिन सुबह तड़के ही दुश्मनों की सेना की गोलाबारी शुरू हो गई। इधर जवानों ने मोर्चाबंदी इतनी कर रखी थी कि पूरा दिन गोलियां चलती रहीं, लेकिन दुश्मनों को एक इंच भी आगे बढ़ने का मौका नसीब नहीं हो पाया था। वहीं दुश्मन की एक टुकड़ी ने पीछे के रास्ते से सड़क पर आकर घेरा, जिसके कारण महाराज के सिपाहियों को वहां से निकलने का रत्ती भर भी मौका न मिल सके। यानी दुश्मन भी बड़ी शातिर तरीके अपना रहा था। युद्ध में ऐसा ही होता है, एक के बाद एक चाले योजनाएं बनाई और खेली जाती हैं। कब किसको सफलता मिलेगी यह कह पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहादुर सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर युद्ध में डटे रहते हैं। साथियों, उधर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दुश्मनों की योजना का पता चल चुका था और तकरीबन सुबह का समय रहा होगा, अपने साथियों को पीछे हटने और सेरी पुल पर डट जाने का आदेश दिया। पहली दुश्मनों की रुकावट को उन्होंने आसानी से खत्म कर दिया था, लेकिन अभी सिपाहियों के वाहनों का काफिला उस क्षेत्र में आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से बोनियार मंदिर के पास से दुश्मनों की सेना ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी थी और काफिला इसकी चपेट में आ गया। दुश्मन की गोली वाहन चालक को जा लगी और वो वहीं शहीद हो गया। कैप्टन ज्वाला सिंह ने बड़ी तत्परता से अपनी गाड़ी के नीचे आकर देखा तो पाया कि तीनों वाहनों के चालक शहीद हो चुके थे। उन्हें ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह कहीं नजर नहीं आए, वे आश्चर्य में भर उठे थे। उधर ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उनका ड्राइवर भी शहीद हो चुका था। साथियों, वे आगे सेरी पुल के पास पहुंच चुके थे और गोलियों का जवाब देते जा रहे थे। अब तक वे काफी घायल भी हो चुके थे, लेकिन उनकी अद्भुत वीरता कम नहीं हुई थी। उनकी इस युद्ध में दाई टांग बुरी तरह जख्मी हो गई थी, लहू बह चला था। असहनीय पीड़ा के बीच वे मोर्चे पर डटे हुए थे। उन्होंने उसी समय अपने जवानों को आदेश दिया कि वे पीछे हटें और दुश्मनों को वहीं रोक कर रखें। वे इस स्थिति में नहीं थे कि उठ पाते। उन्हें जब सिपाहियों ने उठाने की कोशिश की तो वे अड़े रहे और उन्होंने कहा वो उन्हें पुलिया के नीचे उस स्थल में आड़ में लिटा दें। वे वहीं से दुश्मनों को रोकना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तक बड़ी कष्टप्रद स्थिति में वे थे। फिर भी उन्होंने दोपहर तक युद्ध जारी रखा और अंत में उनकी वीर देह शांत हो गई। साथियों, इस तरह ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। हम सभी को उनकी वीरता, अदम्य साहस पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने अपने परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा की, अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें दिल से नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

साथियों, 26 अक्टूबर सन 1947 की शाम को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर समझौता हो चुका था। 26 अक्टूबर की तारीख ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ नाम कर गए। उनके इस बलिदान को शत शत नमन। अमर रहेगी ए वीरो तुम्हारी शौर्य की अमर कहानी, युगो युगो तक दोहराएंगे भारत के हर वासी। तुम हो भारत माँ के सच्चे रक्षक, तुम सा नहीं धरा पर कोई और सानी। फौजी साथियों, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को मरणोपरांत 26 जनवरी सन 1950 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

साथियों, आज की विशेष जयमाला में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो दीजिए अब इजाजत, जय हिंद।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन। बांसुरी पर हैं श्रीधर केंकरे।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी कुत्ते के पिल्ले, लेखक और प्रस्तुतकर्ता गुरमीत रामलमीत।
1: शाबाश डॉगी शाबाश, तुम बहुत बहादुर हो डॉगी, एकदम टाइगर हो टाइगर, शाबाश शाबाश डॉगी। मम्मी पापा पापा मम्मी, ओहो आप दोनों कोने में दुबके बैठे हो, अरे अब तो बाहर आ जाओ ना, चोरों को मैंने भगा दिया है।
2: अरे बेटी तू कहाँ थी, तू तो अपने कमरे में नहीं थी।
1: तुम्हारी बेटी एक बहादुर लड़की है मामा, देखा मैंने चोरों को कैसे भगा दिया।
3: बेटी डॉगी को कहाँ से ले आई।
1: पापा मुझे जैसे ही भनक लगी कि चोर हमारे मकान में घुस आए हैं, तो मैं चोपड़ा अंकल के घर से डॉगी को ले आई, डॉगी ने चोरों को भगा दिया, देखा।
2: बेटी मेरा तो कलेजा ही निकल गया था।
3: अरे चलो जान बची लाखों पाए, चोर भाग गए, अब सो जाओ चैन से।
2: तुम्हें तो हमेशा सोने की चिंता बहुत रहती है, अगर डॉगी ना आता तो चोर सब कुछ लूट कर ले जाते। मैंने कितनी बार कहा कि एक कुत्ता घर में पाल लो, घर की रखवाली के लिए कुत्ते का होना बहुत जरूरी है।
3: अरे भगवान तुम फिक्र मत करो, सवेरा होते ही कोई ना कोई कुत्ता जरूर ले आऊंगा।
1: शुक्र है पापा जी, जो आपको ये महसूस तो हुआ कि घर की रखवाली के लिए कुत्ता होना कितना जरूरी है। अंकल चोपड़ा रोज रोज हमें डॉगी थोड़ी देंगे, उन्हें भी तो इसकी जरूरत है।
2: रजनी के पापा लेकर आना, जरूर लेकर आना डॉगी को, लेकर आना।
1: मम्मी
2: हाँ, अरे
1: मम्मी उफो उठो ना, देखो कितना दिन चढ़ाया है, मैं तो कॉलेज के लिए तैयार भी हो गई हूँ।
2: अरे रजनी।

0: तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? कितना दिन चढ़ाया है?
1: मेरे पढ़ने के साथ साथ मम्मी आप भी रात को देर तक जागती रहीं। मैंने सोचा आप अपनी नींद ही पूरी कर लें।
0: बेटी सो तो ठीक है, पर सुबह सुबह मैंने बहुत बुरा सपना देखा।
1: ओफो मम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सपनों के वहम में मत पड़ा करो।
0: अरे मैं वहम में तो नहीं पड़ती, फिर भी संभावना तो किसी बात की भी हो सकती है।
1: अब आप कहेंगी कि सुबह का सपना कई बार ठीक निकलता है।
0: चलो अगर सपने की सच्चाई पर ना भी विश्वास किया जाए, पर चोरों का काम तो है ही चोरी करना, वो हमारे भी घर आ सकते हैं।
1: इसका मतलब आज सपने में चोर हमारे घर में घुस आए?
0: और क्या, अगर आज सपने में आए हैं तो किसी दिन वास्तव में भी आ सकते हैं। घर भरा पड़ा है हमारा, इतनी बड़ी दुकान है, अगर चोर आ गए तो वो सब कुछ लूट कर ले जाएंगे।
1: मम्मी इतना डरना ना ठीक नहीं है। बस
0: पर फिर भी सावधान रहने में हर्ज ही क्या है? तुम्हारे पापा जी कहते थे कि शाम तक आ जाऊंगा, पर देखो अब तक नहीं आए।
1: पापा शायद कोई कुत्ता ढूंढ रहे होंगे। जाते समय आपने बहुत ताकीद की थी ना?
0: सो तो है ही, पर वो आए क्यों नहीं?
1: उफो मामा, देखो अब 8:30 बजने को हैं, मैं तो चली कॉलेज। बाय। लो पापा जी भी आ गए। वाह वाह पापा जी, आप तो वाकई तो पिल्ले ले आए।
2: हाँ बेटी, मैंने सोचा एक पिल्ले का भी क्या ले जाना, दोनों ले चलता हूँ दोनों।
0: हाँ पहली बार किया कल का काम, अगर रात को डॉगी ना आता तो समझ लो चोरों ने हमारा घर लूट ही लिया था।
2: क्या कहा, क्या क्या रात को हमारे घर में चोर आ गए थे?
1: पापा जी आप तो सचमुच डर गए पापा। चोर केवल मम्मी के सपने में आए थे।
0: पर मैं तो सपने में भी बहुत डर गई।
2: अरे मैं तो गाड़ी से उतरकर आ रहा था तो रास्ते में ही एक नौजवान कुत्ते के पिल्ले बेचता हुआ मिल गया। कह रहा था कि एकदम बढ़िया नस्ल के पिल्ले हैं, बड़े होकर चोरों को 1 किलोमीटर दूर से सूंघ लेंगे। हाँ वैसे बहुत बढ़िया है।
0: सच रजनी, देखो कितने प्यारे पिल्ले हैं।
1: मम्मा हाँ,
0: लगता है भूखे हैं बेचारे, देखो कैसे मुंह खोल रहे हैं। जा जरा दूध तो लेके आ, अभी पिलाते हैं।
1: पापा पापा ये चूचा तो करते ही नहीं, बड़े अजीब पिल्ले हैं।
0: अरे अभी बहुत छोटे हैं ना, कैसे चूचा करेंगे, खास नस्ल के दिखते हैं।
1: ठीक है अब आप दोनों इन पिल्लों को संभालो और दूध पिलाओ, मैं चली अब।

0: बढ़िया किस्म के पिल्ले ले लो बाबू पिल्ले ले लो।
1: अरे हो भाई पिल्ले वाले, जरा इधर तो है ना। हाँ जरा
2: बाबू जी, क्या आपने मुझे बुलाया?
1: अरे हाँ भाई, ये एक पिल्ला कितने का दिया?
2: जी आप ले लो, जो सो है ठीक ही लगा लेंगे कसम इन पिल्लों की।
1: अरे भाई तब भी बताओ तो कितने के हैं?
2: बस जी ये दो ही रह गए हैं, जो है सो है, वैसे पूरे छह थे।
1: भाई तुम्हारे पिल्ले लगते तो बढ़िया किस्म के हैं।
2: जी मैं तो हमेशा ही बढ़िया माल बेचता हूँ कसम इन पिल्लों की।
1: अरे मियाँ शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं।
2: कसम इन पिल्लों की ना जाने कितने ग्राहकों से रोज वास्ता पड़ता है बाबू जी।
1: मैंने तो सोचा था तुम मुझे पहचान गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
2: कसम इन पिल्लों की कुछ गड़बड़ लगती है, अरे इससे जान बचाकर भागना ही भला है। अच्छा बाबू जी चलो धंधे का बखान।
1: अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले? मुझे दो पिल्ले और चाहिए ना, कहा तुमसे मैंने।
2: और का क्या मतलब है आपका?
1: इसका मतलब ये हुआ मियाँ कि तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना।
2: अच्छी कसम इन पिल्लों की कहा ना कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है बाबू जी।
1: अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ चलकर सब कुछ ध्यान में आ जाएगा।
2: जी बाबू जी मैं आपके घर चलकर क्या करूँगा? अरे मुझे तो अपनी रोजी कमानी है।
1: मैं भी तो तुम्हारी रोजी में ही अपना हिस्सा डालने की बात कर रहा हूँ।
2: फिर यही क्यों नहीं ले लेते आपको ये बिल्ले?

0: कसम इन बिल्लों की।
1: इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना मिया।
0: अच्छा बाबूजी मैं चला।
1: अरे भाई मैंने कहा ना मैं दो पिल्ले और खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने जो हमें दो पिल्ले पहले दिए थे ना, अरे वो क्या बात है, वो तो बहुत बढ़िया नस्ल के निकले
0: है।
1: अब तो तुम्हें ध्यान आ गया होगा कि मैं कौन हूँ।
0: जो है सो है, क्या वो बहुत अच्छे निकले। मुझे याद आया बाबूजी, 6 महीने पहले ही आपको 2 पिल्ले बेच दिया था।
1: इसीलिए तो मुझे 2 पिल्ले और खरीदने हैं मियां, किसी रिश्तेदार ने मांगे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिल्लों की नस्ल बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया होती है।
0: जो है सो है, ठीक है बाबूजी, पर मेरा तो ख्याल था कि यही ही।
1: अरे वो एक बात है, वो कहने की ये बात है कि क्योंकि मैं तुम्हें पैसे घर जाकर ही दे सकता हूँ, इस वक्त मेरे पास है नहीं। घर चलो।
0: जैसी आपकी इच्छा। जो है सो है, तो चलो बाबूजी।
1: क्या तुमने कुछ सुना मियाँ?
0: ये क्या बोल रहे हैं?
2: क्या आप इसी से वो कुत्ते लाए थे पापा? पापा अभी अभी चोपड़ा अंकल आए थे, उन्होंने बताया कि ना ये जो है। अरे एक मिनट सबर तो कर, पहले इस कुत्ते वाले की बात तो सुन ले।
1: बेटी तुम जरा दोनों कुत्तों को लेकर तो आओ।
2: अच्छा पापा अभी। अजी उनको अभी भी कुत्ते बोलते हो?
1: कुत्ते वाले के सामने उन्हें कुत्ते नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा।
2: हाँ पापा लो लो इन्हें ले आई मैं।
1: भाई ये बताओ कि घर में एक अजनबी को देखकर क्या कुत्ते भौंकेंगे या नहीं?
0: क्यों साहब, कोई जरूरी तो नहीं है ना?
2: क्यों जरूरी नहीं, अगर अजनबी को देखकर कुत्ता भौंकेगा नहीं तो वो फिर कुत्ता कहेगा, ऐसे कुत्ते से तो
3: गीदड़ ही भला।
1: और हकीकत में ये गीदड़ ही है।
2: चोपड़ा अंकल भी अभी अभी बताकर गए कि ये दोनों गीदड़ हैं। गीदड़?
0: ये कैसा हो सकता है?
1: रे वैसे ही मियां जैसे तुमने किया है, तुम तो कहते थे कि कुत्ते के पिल्ले बहुत बढ़िया नस्ल के हैं।
2: क्या यही इनकी नस्ल है जो दूसरे कुत्तों को देखकर अंदर घुस जाते हैं, दूसरे कुत्तों को भौंकते देखकर दम दबाकर भाग लेते हैं?
3: गीदड़ तो कुत्ते को देखकर भागेगा ही ना।
1: अरे अब बताओ भाई, तुम्हारा क्या इलाज किया जाए? क्या बुलाऊं पुलिस को? तभी तो तुम मुझे न पहचानने का बहाना कर रहे थे।
2: सच कितना शौक था कि घर में कुत्ता पाला जाए जो घर की रखवाली भी करे।
0: अजी जो है सो है, तो ये दूसरे पिल्ले ले लो, ये एकदम बढ़िया किस्म के।
1: खबरदार, जो और पिल्ले देने का नाम लिया तो मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ।
0: बाबूजी, अरे बाबूजी माफ कर दो ना, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। अजी उस दिन घर में खाने का कुछ नहीं था, वैसे हम कुत्ते ही पालते हैं साहब, उनके बच्चे बेचते हैं, उस दिन बेचने के लिए बिल्ले थे भी, इसलिए मैंने गीदड़ के बच्चों को ही आपको दे दिया। लेकिन लेकिन साहब ये सचमुच बिल्ले ही है।
1: मैंने कहा ना भाई कि हमें कोई बिल्ले नहीं चाहिए, समझे?
0: ये पिल्ले मैं मुंह बदल देता हूँ साहब, की जड़ को ले जाता हूँ, किसी चिड़िया घर में दे दूंगा।
2: पर ये तो गीदड़ नहीं निकलेंगे ना?
0: ऐसा हुआ तो बीबी जी, जो चोर की सजा सो मेरी सजा, कसम इन पिल्लों की।
1: अरे सुनो, अगर 6 महीने के बाद ये पिल्ले कुत्ते निकलेंगे तो हम तुम्हें जरूर पूरे पैसे दे देंगे, पहली गलती की तुम्हें माफी।
0: बाबूजी आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। इंसान गरीब में गलती बह करने के लिए मजबूर हो जाता है ना। कसम इन पिल्ले की राम।

कुत्ते के पिल्ले अभी आप सुन रहे थे ये झलकी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे गुरमीत रामलमीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की भेंट।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला से। आवाज भूमि त्रिवेदी की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ करिमा के और संगीत संजय लीला भंसाली का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहां से पहली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

श्रोता ने गीत आपने सुना फिल्म भारत से, आवाजें श्रेया घोषाल और नक्काश अजीज की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत विशालन शेखर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म बटला हाउस से। आवाजें नेहा कक्कर, तुलसी कुमार और बी प्राक की थी। गीत के बोल तनिष्क बागची और देव कोहली के, संगीत तनिष्क बागची और विशाल इंदशेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म विक्की एंड विद्या का वो वाला वीडियो से। आवाज सुनिधि चौहान और दिव्य कुमार की थी। गीत के वो लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत संदेश शांडिल एंड वाइट नॉइस कलेक्शन का।

0: थोड़ी देर में
1: आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। हम एफएम सेंसिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।
2: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला, बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: पश्चिम बंगाल आयुष्मान

भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान

0: के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को

0: बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हैशटैग आस्क AIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती,

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

अमृता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सुफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर ये पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहाँ परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आईं और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब के बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर उन पर

लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्नेवाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003 केन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की ये पहली फिल्म थी और उनकी पहली हीरोइन बनी अमृता राव।

इस फिल्म के लिए शाहिद कपूर और अमृता राव ने जीता फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड।

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थी। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

साल 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006 एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की आर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इवल हियर नो इवल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता राव।

यहाँ तक आते आते अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर।

अमृता राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवीजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ

साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

इसके बाद कुछ फिल्मों में अमृता राव ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आई सुभाष कपूर की फिल्म जॉली LLB में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आई अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीनाताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह किया।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब से धरती बनी है सूरज उगता है और फिर उफक के उस पार ढुलक जाता है अगली सुबह फिर से आने के लिए। जब से बनी है धरती तब से हो रही है शामें, लेकिन हर शाम का रंग अलग अलग होता है। कोई शाम होती है गुलाबी, रूमानी, नाजुक और नरम, तो कोई शाम ऐसी होती है मानो उसमें खुल गया हो उदासी का रंग, आंसुओं का नमक। ऐसी शामों में दिल डूब डूब जाता है। कोई ऐसी शाम होती है जब मन सोच के समंदर में डुबकी लगाने लगता है। कोई उदासी, कोई ख्याल, कोई फलसफा, ऐसी शामों का

कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई गीत हमारी बात कहता नजर आता है, यूं लगता है कि यही बस यही तो थी हमारी कैफियत, हमें लफ्ज नहीं मिल रहे थे। कुछ एहसास शब्दों के परे होते हैं, कोई आवाज सीधे दिल में उतर जाती है, क्योंकि ये दिल की आवाज होती है, दिल की पुकार, एक बेचैन दिल की पुकार। गाने इसीलिए हमारे हमदम, हमारे मीत बन जाते हैं।

गीत में हम ऐसे गीत लेकर आते हैं जो दिल के नर्म एहसासों को छुएं, जिन्हें सुनकर लगे कि हाँ बस यही तो मेरा गाना है। विविध भारती इसीलिए आपका हम सफर बन जाता है, क्योंकि हर पल आपका साथ निभाता है। अचानक गूंजता है कोई मधुर स्वर, जैसे रात में जुगनू चमक उठते हैं। अंधेरे में घिरी रात ऐसे चमक उठती है जैसे हजार हजार चराग जल उठे हों।

मौसम सीधे मन पर असर डालता है। इसीलिए तो दुनिया बदहवास भागी जा रही है पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां बिताने। आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि कैसी भीड़ होने लगी है आजकल पहाड़ों पर। पहाड़ों पर पसरी खामोशी अच्छी लगती है। सदियों से खड़े हैं ये पहाड़ आसमान से बातें करते, हवाओं के कान में कुछ कहते। पहाड़, मौसम, नगमा।

जैसे कहीं दूर से कोई पुकार रहा है, एक बेचैन पुकार। सदियों का इंतजार, सदियों की कशिश, एक आवाज जिसमें है उदासी की लहर। जाने कौन है जो किसी को रोकना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता। जाने कौन है जो वक्त को रोक लेना चाहता है। जाने कौन है जो दूर से पुकार रहा है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: हम एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर रात के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले।

0: किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये अंतिम सभा यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर कल की पहली सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।